वेत का पैवत बढ़ता गवरकत पाड़ करे बिया हो खटका गल दसेरा हो सुन वेखो लोका एहो विड़ान मानंदा ना सो जान पौड़ी।

पौड़ी आपे करना क्योंकाल आपे ही तै धारी है। देखै कि अपना तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है। जिसके जीए प्राण है क्यों साए मनु सारी है।

पौड़ी जैसे सुख पाइए सुसाए सदा संभालिया जेती पाइए अपना सा काल बुरी क्यों कालिया मंदा मूला की चाई दे लम्मी नजर निहालिया जो साहेब नाल नहारिये ते वेहा पासा ढालिया किछ लाहे उपर कालिया किछ लाहे।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 kHz, DRM 864 kHz, FM ਬੈਂਡ 100.8 MHz, FM ਬੈਂਡ 100.9 MHz ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ
1: ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को जांस्कर घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन

0: किए जिसमें कई इसराइली सैनिक घायल हो गए। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के एल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

उस परम पिता परमात्मा दे दरबार लगवा रहा हाजरी भगती संगीत दे प्रोग्राम आराधना दे नाल।

राजा प्रताप भानु उस घोर वन में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय देने वाले मुनि से बहुत प्रभावित हुआ। अतः सविस्तार उसका नाम धाम जानने की इच्छा प्रकट की। मुनि कपट में डुबोकर मधुर वचन बोला, तुम पवित्र विचार तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, अतः तुमसे यदि कुछ छिपाऊं तो मुझे दोष लगेगा। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी कारण मेरा नाम एक तनु है। फिर उसने राजा को तपस्या की महिमा बताई। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और तप से ही प्राप्त शक्ति से रुद्र उसका संहार करते हैं।

हुणे तुसी सरवण कर रहे सी श्री रामचरित्र मानस दा लड़ीवार पाठ मानस कान। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। सवेर दे 6:50 हो रहे ने। आओ हुण तुहानू परिचय तहत अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दी जानकारी दे दईए।

मीडियम वेव 343.76 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 बजे ने पेश ने मुख खबरां। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई विच 349 किलोग्राम कोकीन जब्त करके नशीले पदार्थों के एक वड्डे अंतरराष्ट्रीय रैकेट नू पर्दाफाश किया है। सरकार ने नागरिकता एक्ट 2026 नू नोटिफाई कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बसवा शर्मा दी पत्नी विरुद्ध कथित झूठे बयान दे नाल संबंधित मानहानि दे मामले विच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा नू अगाऊं जमानत दे दित्ती है। चोन कमीशन ने पश्चिमी बंगाल दे 15 पोलिंग स्टेशनां ते दुबारा पोलिंग दा आदेश दिता है। मजदूर दिवस दे मौके ते देश दे समाजिक आर्थिक विकास विच मजदूरां दा वर्ग दे वडमुले योगदान नू सन्मानित करन दे लई पंजाब विधानसभा दा एक विशेष इजलास होया। पंजाब विच मरदमशुमारी 2027 लई शुरू होई स्वै गणना इस महीने दी 14 तारीख तक जारी रहेगी। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने नगर निगम कमिश्नरां नू आवारा कुत्तियां दे खतरे दे नाल नजिठण लई तुरंत कार्रवाई दे दिते निर्देश। अमृतसर पुलिस ने नशियां ते हथियारां दी तस्करी करन वाले 2 गिरोह दा पर्दाफाश करदिआं 10 किलो तो वध हेरोइन 4 पिस्तौलां समेत 3 मुलजमां नू कीता गिरफ्तार। पंजाब कमिश्नरेट पुलिस दे साइबर क्राइम थाने वलों गुम होए 31 मोबाइल फोन लभ के असल मालकां नू सौंपे गए। पुलिस ने नागरिकां नू गुमे जां चोरी होए मोबाइल फोनां दी रिपोर्ट नज़दीकी सांझ केंद्र या CEIR पोर्टल ते दर्ज कराउण दी अपील कीती। झारखंड दा 1 7 साला मुंडा एकांश सिंह पल्स स्ट्रेट पार करन वाला सब तो घट उम्र दा तैराक बन गया है। ई संजी हुन तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7:02 होए ने पेश है जी प्रोग्राम सोनी सवेर।

नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। असी अपने सारे ही सुनन वालियां दा प्रोग्राम सोहनी सवेर दे विच स्वागत करदे हां। सोहनी सवेर, बिल्कुल जी, क्योंकि हर सवेर लेके आउंदी है अपने नाल खुशियां, ज्ञान ते नाल ही मिठी मुस्कान। अज दी इस सुहावनी सवेर दे विच ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣ, ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ।

0: कभी तो हंसाए।
1: कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, पर रुलाण वालियां कीमता जड़ियां ने ना वो LPG सिलेंडर दियां हो गया ने। खास करके जी हाँ, गल कर रहे हैं खास LPG सिलेंडर वो वाली जिहड़े व्यापारक तौर पर वरते जाते हैं। केंद्र ने देश भर के 19 किलोग्राम वाले व्यापारक LPG जिहड़े सिलेंडर ने उन्हां दी कीमत दे विच 993 रुपए का वाधा कर दिता है, पर अजे घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत विच कोई बदलाव नहीं आया। 19 किलोग्राम वाले व्यापारक सिलेंडर की कीमत हुण दिल्ली दे विच 3,071 रुपए 50 पैसे हो गई है। इस तो पहला व्यापारक सिलेंडर जिहड़े सी उन्हां दी कीमत 2,078 रुपए 50 पैसे सी। इस तरह व्यापारक सिलेंडरां दी कीमत वध जाण ते होटलां रेस्टोरेंटां दे विच जिहड़े खाण पीण वालियां चीज़ां दी कीमत दे विच वी वाधा होवेगा, जिस दा असर आम लोग जनता ते साढ़े सारियां ते पवेगा। इस दा असर उन्हां लोकां ते होर वी वध पवेगा जो खाण पीण दा छोटा मोटा काम करदे ने। उन्हां नूं हुण ज़्यादा पैसे गैस सिलेंडर ते लाने पैणगे। इस दे दौरान 5 किलो वाले LPG सिलेंडर दी जिहड़ी कीमत है ना वो 261 रुपए वध गई है। 5 किलो वाले LPG सिलेंडर दी कीमत पहला ना जिहड़ी पहला सी वो सी 549 रुपए, जो कि हुण वध के 810 रुपए हो गई है 50 पैसे दे नाल। ते 5 किलो वाले LPG सिलेंडर दी कीमत हुण घरेलू रसोई गैस सिलेंडर दी दर 1913 रुपए तो थोड़ी ही घट रह गई है। जी हाँ, ते इस करके जिहड़े व्यापारक तौर ते, जी हाँ, क्योंकि व्यापार वाले जिहड़े LPG सिलेंडर ने उन्हां दी कीमत वधन दे करके व्यापार ते असर आना लाजमी है। भई इन्हां ने जे विश्व पद्धर ते देखिए ना, ते विश्व दे अधिकारित क्षेत्रां दे 4 to 8 हफ्तियां दे दौरान तेल दे विच काफ़ी कमी दे आसार हो गए ने। इस करके कीमतां जिहड़ियां ने वह वड्डे पद्धर ते भी वध रहियां ने। दुनिया दा तेल दा स्टॉक रोज़ाना 80 लाख रुपए, माफ़ करना 80 लाख बैरल घट हो रहा है। एशियाई देशों दे विच तेल दा स्टॉक 13% तक घट हो चुका है। सो वध

ही खपत दे कारण ते घट रही, उपलब्धता दे कारण इन्हां चीज़ां दे विच वी महंगाई आ रही है। सो उपराले करन दे लई जे सोचिया जावे तां फिर नैचुरल तरीके दे नाल जिहड़ा खाण पीण दा समान है या वो चीज़ां दी वरतों अपनी रोज़ाना रूटीन दे विच वधानी चाहीदी है जिन्हां दे विच गैस दा प्रयोग नहीं हुंदा। स्कूला कालजा दे विच वी नो फायर कुकिंग जिहड़ी है ओ हमेशा ही दसी जांदी है। समय समय ते इस दे प्रति प्रतियोगितावां भी करवाईयां जांदियां ने तां कि इन्हां मुश्किल वेलियां दे विचों निकलना आसान होए। ते उही अद्ध कच पका भोजन खाण दे नाल शरीर नूं भी फायदे। सो खपत जिहड़ी है उसनूं किसे तरीके दे नाल घट करन दी भी सख्त लोड़ है ते इन्हां साधनां नूं बचाण दी भी लोड़ है। नहीं तां फिर जिहड़े गीत ने महंगाई ते उही सुने जाणगे ते बिल्कुल उन्हां दे नाल ही लगेगा कि ये साड़ी ही गल हो रही है।

0: पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग

0: सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमरीका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कुत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कुत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चिउ हिस्यांग चिए और वांग चे लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005

के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटे ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु,

0: 75 रन बनाए, केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान, आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोकसत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Repolling begins in 15 polling stations of 2 assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under 17 Women's Asian Cup after 21 years in China.

0: असल मालिका नु सौंपे गए। पुलिस ने नागरिका नु गुमे जा चोरी हुए मोबाइल फोन आदि रिपोर्ट नजदीकी सांझ केंद्र जा CEIR पोर्टल ते दर्ज कराउन दी अपील की थी। अते IPL क्रिकेट दे विच दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स नु सख्त विकटां दे नाल हराया। ए संजी हुन तक दिया मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। फिल्म म्यूजिक इस प्रोग्राम दे लई बस कुछ कु पलां दा इंतजार।
1: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश है जी फिल्म संगीत। फिल्म संगीत दे इस प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत है। आज दा ये प्रोग्राम खूबसूरत जिंदगी दे उत्ते। जी हाँ, जिंदगी जिस दे विच खूबसूरती ते है पर हर समझण वाले दे। कदी सोचे जिंदगी की है, एक सफर, एक कहानी जा फिर एक सुहाना गीत। कदी हसदी, कदी मुस्कुरांदी, कदी रुलांदी भी, पर हर वार कुछ नवा सिखाउंदी। हर वार कहंदी

लो जी, इस खूबसूरत गीत दे नाल हो गई है शुरुआत। ते पता है, जिंदगी जिहड़ी है ना, वह वड्डियां चीज़ां दे विच नहीं हुंदी, छोटियां छोटियां खुशियां दे विच लुकी हुंदी है। माँ दी मुस्कान, दोस्तां दी हामी, अते एक शांत खूबसूरत दिन भी। जदों रस्ते औखे होण तां रुकणा नहीं, हिम्मत उम्मीदां वाली ए जिंदगी। जिंदगी जिहड़ी पहेली वांग जापदी है, कदे हसना कदे रोना, बिल्कुल हमेशा ही खुशी नहीं रहिंदी ते हमेशा ही दुख नहीं रहिंदे। ये तो मिक्स है, हसना दा भी रोण दा भी, सीखण दा भी ते अगे वधण दा भी। सो जिंदगी जिहड़ी है ना, वो मुस्कुरा के हस के गले लगाउंदी है ते फिर अपने आप ही खूबसूरती जिहड़ी है उछलक पैंदी है।

लो जी, संतराल दे बाद फिर तो स्वागत कर दिया तुहाड़ा प्रोग्राम फिल्म संगीत दे विच। ते प्रोग्राम दे विच अगला खूबसूरत गीत जिहड़ा कहिंदे जिंदगी उदों खूबसूरत हुंदी है

थोड़ी दे विच वी मुस्कुराना सीख लिए ते बस फिर होर की चाहिए। जिंदगी एक तोहफा है, इसनों संभाल लिए, हर पल नू खूबसूरत बनाइए, क्योंकि कल का कोई वादा नहीं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए ते जिंदगी नू प्यार करते रहिए इस खूबसूरत गीत की तरह।

0: प्रोग्राम सुनदे हां, बहुत ही जानकारी भरपूर हुंदे ने। साडे बच्चियां ने जोर पाया कि तुसी भी चिट्ठी लिखो। फिर मैं आप जी नूं चिट्ठी लिखी। कहिंदे सारा दिन रेडियो सुनदे हां जी असी, ते 3 बजे तो लै के रात तक असी सारे प्रोग्राम सुनदे हां। ते कहिंदे जिहड़ा 3 तो 4 बजे तक फरमाइशी गीत चिट्ठियां मिठियां चलाउंदे हो,
1: जी
0: आप जी सानूं भी कहिंदे उहदे च गाणे जरूर सुना दिया करो। और इन्हां ने एक फरमाइश लिखी है जी गाणे दी, सो जी कोशिश करांगे कि असी जरूर सुना दईए।
1: बिल्कुल ठीक है जी। देखो ये तुसी तुहाडी लिखा है खत, तुहाडी चिट्ठी मिली प्रोग्राम दे वास्ते,
0: जी
1: और इस दे वास्ते तुहाडा खत लिखण वास्ते तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। चनारथल कलां ज़िला फतेहगढ़ साहिब तो तुसी खत लिखा सी सानू। उस दे विच तुसी लिखा है कि तुहाडे बच्चे भी तुहाडे नाल रेडियो सुनते ने बैठ के। ये सानू बहुत मतलब सुकून मिलिया इस चीज़ नाल कि देखो बच्चे विद्दे विच भी रेडियो सुनने का शौक है। नहीं तो अजकल की है मैडम ये
0: जी
1: सुनीदा है कि बच्चे जड़े ने जी मोबाइल ते लगे रहिंदे ने जां टीवी देखते हैं, मोबाइल के उपर रीलां जां कुछ होर इस तरह के जिहड़ा कंटेंट है वह
0: जी
1: ज़्यादा देखते हैं। पर यह देख के मैं बड़ा अच्छा लग्या कि देखो इन्हां दे बच्चे जड़े ने उन्होंने कह के खत लिखवाया।
0: बिल्कुल जी, इहदा मतलब ये है कि ये बच्चे जड़े ने ओ बाल जगत भी जरूर सुनते होंगे,
1: जी
0: और असी इन्हां नूं कहांगे कि जे बाल जगत सुनते ने तो जरूर सानू लिख के भेजन कि उन्हां नूं किहो जिहा लगता है प्रोग्राम, और
1: जी
0: जे ओ इहदे च भाग लेना चाहते ने तां वी सानू दस्सन।
1: जी बाल जगत प्रोग्राम असी दस दिए कि बच्चों का प्रोग्राम है हर ऐतवार दोपहर 12:05 ते साडे केंद्र तो प्रसारित किया जाता है, जिहड़ा बच्चों द्वारा ही प्रसारित किया जाता है। तो बच्चे ही उस तू अपने उस विच अपनियां वख-वख तरह दी आइटमां पेश करते हैं।
0: जी, और बहुत सारी जिहड़ी जानकारी है उहदे विच दित्ती जांदी है।
1: कई तरह के बन गए ने उहदे विच, सवाल जवाब के सिलसिले भी पेश किए जाते हैं, और जिहड़े बच्चे हुनरमंद बच्चे ने
0: जी
1: कला दे विच अपना शौक रखते हैं वह भी अपने कला का प्रदर्शन उस दे विच उस प्रोग्राम दे विच करते हैं। खत लिखण वास्ते तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। सानू इसे तरह खत लिखते रहो तो साडे प्रोग्रामां दे नाल भी आप भी इसे तरह जुड़े रहो, तो अपने बच्चों नू भी साडे प्रोग्रामां नाल इसे तरह जोड़ के रखो। खत लिखण लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: रामा मंडी तो जग्गा सिंह, बलजीत कौर, इन्हां दे पोते तनवीर, गुरवीर, जसनूर, ये कहिंदे जी प्यार भरी सति श्री अकाल। 5/4/26 नूं तुहाडी चिट्ठी मिली प्रोग्राम सुनिया, जिस नूं सुन के बहुत ही खुशी हुई, चाह चढ़ गया, सरूर चढ़ गया। कहिंदे सानूं बहुत ही चंगा लगता है जदों कि साडियां चिट्ठियां पढ़ियां जांदियां ने। इस प्रोग्राम विच कहिंदे बड़ियां सारियां गल्लां हुंदियां ने, वसदे बड़े प्रोग्राम दे विच कहिंदे पिछे जे अक्खां दी बीमारियां बारे वडमुल्ली जानकारी दित्ती गई, कहिंदे कि सानूं बहुत ही चंगियां लगियां। सचमुच जिहड़ी कहावत है, अक्खां गईआं जहान गिआ, साडे शरीर दे सारे ही अंग बेकीमती हन जिन्हां दी असी कीमत नहीं दे सकदे। एक एक अंग अरबां खरबां नूं वी नहीं मिलदा।
1: जी
0: तुसीं रेडियो दे राहीं बहुत स्रोतियां नूं जागृत कर दित्ता कि अक्खां दी किस तरह संभाल कीती जावे, किस तरह अक्खां दान कीतियां जा सकदियां ने। अजिहे प्रोग्रामां दा असर स्रोतियां ते बहुत ही हुंदा है। डॉक्टर अरुण वर्मा ते गुरप्रीत वर्मा दा बहुत बहुत धन्नवाद वडमुल्ली जानकारी देण लई। आकाशवाणी जलंधर दा बहुत बहुत धन्नवाद। इसी तरह दा जी इहनां दा दूजा खत वी है, उस 'च भी इहनां ने जिन्नियां भी साडियां पेशकारियां हुंदियां ने रेडियो दे उत्ते
1: जी
0: उहदे बारे इहनां ने लिख्या है कि सानूं सारे सिलसिले जिहड़े ने बहुत ज़्यादा चंगे लगदे ने, और
1: शुक्रिया
0: असी
1: जी, शुक्रिया।
0: रेडियो कहिंदे बहुत ज़्यादा सुनदे हां, ते असी दुआ करदे हां कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे।
1: देखो सानू दो खत इन्होंने लिखे ने और
0: जी
1: किन्ने विस्तार नाल लिखे ने जग्गा सिंह जी ने रामा मंडी तो। ते इन्हां
0: जी
1: दे बहुत सारे साथी ने, ते इन्हां दे पोतरे तनवीर, गुरवीर ते जसनूर भी इन्हां दे नाल ने। और देखो किन्नी सोहनी इन्होंने गल की है कि लगातार प्रोग्राम सुनते हैं,
0: जी
1: है जी, और अखा दे संभाल दे बारे जिहड़ा प्रोग्राम पेश कीता सी वसदे विहड़े दे विच ओह इन्हां नूं पसंद आया। इस दे वास्ते तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इन्हां ने यह भी दस्सिया कि रेडियो तो जिहड़े प्रसारित किए जाते हैं वख-वख तरह के प्रोग्राम वो इन्हां नूं पसंद होंदे ने, और साडे प्रोग्राम दे नाल इसे तरह जुड़े रहो जी। साडी तो यही थोनू गुजारिश है, और अपने दोस्त मित्र जिहड़े हैगे ने होर तुहाडे उन्हां नूं भी तुसीं रेडियो दे बारे विच, रेडियो ते पेश कीते जांदे प्रोग्रामां दे बारे जरूर दस्या करो, तां कि वध तों वध स्रोते साडे प्रोग्रामां दे नाल जुड़ सकण, और साडा जिहड़ा स्रोतियां दा परिवार है ये होर विस्तृत विस्तार उहदे विच होर ज़्यादा हो सके। बहुत बहुत
0: जी
1: शुक्रिया जी खत लिखण वास्ते।
0: ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਖਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛੜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ,
1: ਜੀ
0: ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਪੰਖੂ ਤੇ ਨੀਤੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश है जी प्रोग्राम हैलो फरमाइश। हैलो फरमाइश प्रोग्राम सुनन वालियां नूं रुपिंदर दी प्यार भरी नमस्कार। अज दे इस प्रोग्राम दे विच रोज़ाना दी तरह ही तुसी साडे नाल फोन ते राबता कायम कर सकदे हो। 081-43-143 नंबर कर रहा जी तुहाडा इंतज़ार। तुसी इस फोन नंबर ते कॉल मिला के सुन सकदे हो अपनी पसंद दा गीत। सो जद तक तुसी साडे नाल हो रहे हो कनेक्ट, तद तक दे लई प्रोग्राम

0: ਤੇ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ,
1: ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਊਟ ਕਿਊਟ ਚਿਟ ਚਿਟ ਮੈਮ ਕੋਰਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ।
0: ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ
1: ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਵੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਨੋਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਾਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇ।
0: ਬੇਹੱਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤਨੂਸ਼੍ਰੀ ਆਪਕਾ।
1: ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ।
0: ਜੀ ਤਨੂਸ਼੍ਰੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੋ?
1: जी मैम, मुझे दसवीं से भी कहीं नहीं देता, तब से मैं शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ।
0: शास्त्रीय संगीत से जुड़े हो?
1: जी।
0: अरे वाह, बेहद
1: और आपसे बात करना मुझे बहुत मैम अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप प्रोग्राम में शामिल हो रहे हो, आपने नंबर मिलाया है और आप पहुंचे हो,
1: जी
0: है ना।
1: तो आपका नंबर मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पंजाबी में नंबर है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर फिर से मैंने उसमें बहुत रिसर्च किया और फिर डायल किया तो मैम लग गया।
0: अरे अरे, बिल्कुल लग गया नंबर, और हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक नंबर जो है ना वो हिंदी में भी पहुंचा दिया करें, है ना।
1: हाँ जी मैम, हिंदी में नंबर होता है ना तब मैम समझ आता है, हमारे महाराष्ट्र में तो हिंदी और मराठी होती है ना, तो पंजाबी समझ ज्यादा नहीं आती, पर आपसे जुड़ती हूँ तो पंजाबी भी थोड़ी थोड़ी सी सीख ली है।
0: अरे वाह, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी हिंदी पंजाबी तीनों में बोल दिया करें, है ना। हमारे श्रोतागण इतनी दूर दूर से हमारे साथ यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, है ना। तनुश्री, जितनी प्यारी आपकी आवाज़ है, आप भी प्यारी हैं, तो बताइए अब गीत कौन सा सुनेंगी?
1: फिल्म का नाम है लव स्टोरी, और मैम आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा वो गुनगुना सकती हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: जी देखो, मैंने देखा है एक सपना फूलों के।

0: श्रोताओं को और मेरे पापा को डेडिकेट करना चाहती हूँ।
1: जी बिल्कुल, सब तक पहुंच रहा है ये गीत, जहां तक
0: ओके
1: आवाज जा
0: बाय
1: रही है। बिल्कुल, कॉल
0: जी,
1: करने के लिए शुक्रिया तनुश्री।
0: बाय बाय।
1: बाय बाय।

लो जी, प्रोग्राम चल रहा है जी। हैलो फरमाइश ते हैलो फरमाइश प्रोग्राम दे विच वेला हो गया जी, एक छोटे जहे अंतराल दा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज

0: लो जी, इस अंतराल तो बाद स्वागत कर दें आपने अगले कॉलर का। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार जी।
1: सत श्री अकाल मैडम जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: भजन सिंह बोल रहा, फिरोजपुर तो, पिंड साबूना। साबूना
0: जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: स्वागत मैडम
0: जी, भजन सिंह जी, फिर दस दियो केड़ा गीत सुनोगे
1: मुगले आजम से कोई सुना दो, आज सुनाए
0: जी। ठीक है जी, कॉल करने के लिए शुक्रिया। लो जी, मुगले आजम फिल्म चो गीत सुनना चाहते ने।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया देश पराया।
2: ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
3: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। आज से राज्य में घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी जो 31 मई तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के रामोन नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मछुआरा समुदायों के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं। कल श्रीकाकुलम जिले के एर्रानुकम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व निधि से मत्स्य सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
4: We diversified our sources.
5: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से LPG की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमरीका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया। ये कदम यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा ट्रंप के टर्नबेरी गोल्फ कोर्स में हुए समझौते के 1 साल से भी कम समय बाद उठाया गया है। इसके अंतर्गत अधिकांश यूरोपीय वस्तुओं पर 15% शुल्क निर्धारित किया गया था। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमरीका से स्पष्टीकरण

0: मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। यह आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ दे, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। साडे स्रोते आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एयर ते वेव्स ऐप दे राही सुन सकते ने। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। धमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम पेश कर रही तुहाडे सारयां दी अपनी दीपाली वधवा वल्लों प्यार भरी मुस्कुराहट भरी नमस्कार अदाब ते सत श्री अकाल। होर सुनाओ बई, की ने तुहाडे हाल चाल?

0: का तो वरिंदर कालरा, रेखा कालरा, प्रेक्षित प्राची ढींगरा ते कालरा परिवार, फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांधा, इंदरजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा ते जी एस रामगढ़िया, हरजीत कैंथ मौजी कलोनी डाबा लुधियाणा तो हाजिर ने। और अगले सुनेहे नाल पहुंचे ने जी पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश तो सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। बांडीवाला फाजिलका पंजाब तो क्रियांश बगड़िया, योगेश, ओम बगड़िया, बेबी गरिमा, रजत ते मनीष चौधरी भी पहुंचे ने। और सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली तो गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले ये भी हाजिर हो चुके ने। लो जी फिर हरियाणा वाले पिछे नहीं है, झज्जर हरियाणा तो भी पहुंच गए ने बिट्टू भाटिया ते रीटा भाटिया, पिंड कबूल शाह खुबण जिला फाजिलका तो वधावा सिंह, बलकरन, तन्नू, पवी, जस्सी ये हाजिर ने। कहिंदे भी सानू धमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम बड़ा ही वधिया लगता है, अपनी चीज़ तो सारियां नू वधिया लगती है क्योंकि ये प्रोग्राम ही तुहाडा है। लो फिर तुहाडे सारियां दी रली मिली पसंद ते पेश करन जा रही हाँ फरमाइश तुहाडी आशा भोंसले ते नाल साथ निभाया महिंदर कपूर ने गीत तुहाडे रेडियो सैट ते।
1: ते हुंदियां ने मैनू फसदा।

0: तेरा हाथ लग गए वे तेरा हाथ लग गए तेरा हाथ लग गए पुट पैर चंगे आड़िया
1: उत्तों उत्तों खिंची जावे विचों लगन प्यारी।

ना बोले तो यार का दर रह गया, हाथ भी ना लाया ते ओ प्यार का दर रह गया। सौ खा के दस नी सौ खा के दस सौ खा के

प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंती और ये प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो सुन रहे हो। प्रोग्राम इसे तरह जारी रहेगा, कुछ तो थोड़ी देर बाद साढ़े दिल्ली केंद्र तो तुसी सुनोगे स्टम्प्ड सीजन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਨਿਗਮ। सर्वोच्च न्यायालय ने मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्त करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागचे की पीठ ने निर्देश दिया कि आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस कदम को चुनौती देने वाले तृणमूल कांग्रेस के लिए निर्णय एक बड़ा झटका है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अधिकारियों का चयन निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर पहले से ही एजेंट और पर्यवेक्षक मौजूद हैं। आयोग के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। यह कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। बिहार में जनगणना 2027 का पहला चरण आज शुरू हो गया है। स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। जनगणना 2027 का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। सूत्रों के अनुसार पंजाब के 2 अलग अलग जिलों में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। जिलों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। यह इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
2: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
3: अमेरिका
1: के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

0: ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। आगामी मानसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व तो बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माही में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: हेलो,
2: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: हाँ जी, वसदे बेटे प्रोग्राम चल रहा है और फरमाइशी गीतां दा जिहड़ा सिलसिला है झांझरा दे बोर, वह लैके असीं हाजिर होए हुए हैं।
5: बिल्कुल,
4: ब्रेक लै ली सीगी ते होर चिट्ठियां भी साडे हाथ च हैगियां
5: ने,
4: ते
5: करिए शुरू फिर।
4: बिल्कुल जी,
5: अगलियां किहदियां किहदियां फरमाइशां साडे तक पहुंचियां ने। पिंड कड़ियाणा जिला फाजिलका पंजाब तो सानू सत श्री अकाल कह रहे ने मलकीत सिंह कड़ियाणा जी, मनजीत कौर बठिंडा, दीपिंदर सिंह चेयरमैन, पोता गुरशबद सिंह, समूह बराड़ परिवार ने सानू ये चिट्ठी भेजी है। इस तरह मुल्लापुर तो सानू मैसेज आया जी, ये इन्होंने अपने नाम तो नहीं लिखे, बस ये कह कि सानू थोड़ा प्रोग्राम बहुत वधिया लगता है ते तुसी सानू कोई भी गीत सुना दिओ। इस तरह मखू फिरोजपुर तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज जी वहां दी भी सानू फरमाइश आई है। थोड़े को केड़ियां केड़ियां फरमाइश आईयां जी?
4: पिंड मूलियां वाले जिला फाजिलका तो विनोद काठपाल, परवीन काठपाल, हनी काठपाल, दीक्षा काठपाल, जन्नत काठपाल, काका काठपाल, कोटली कला पंजाब तो यादविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, मनजीत सिंह, गुरजोत सिंह, मलोट तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, जिला मुक्तसर पिंड मोहाला तो पाल गिल, गुरदयाल गिल, साधु गिल, दिशा मोहल्ला, दर्शन बराड़, मलकीत कुरियाणा, ए सारे सुनना चाहते ने हरजीत हरमन की आवाज़ के गाया गीत, तो फिर सुनो।
5: बिल्कुल जी, सुनानियाँ तो फिर कर दिया होर गल्लां बातां आपां फर्जी वीडियो प्रोग्राम के।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह के मतगण कर्मियों का चयन कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराया गया था। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के पहले 2 घंटों में 16% से अधिक वोट पड़े। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 4 मई को होगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फागन सिंह कुलस्ते करेंगे। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। IPL क्रिकेट

में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असीं आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ तुहानूं जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किए जाण वाले प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय की। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसीं प्रादेशिक खबरां सुणोगे। सवा 1 तो 2:15 तक तुसीं सुणोगे प्रोग्राम फौजी वीरां लई। इस विच खबरां आपो अपने समय मुताबक निर्धारित कीतियां जाणगियां। बाद दोपहर 2:30 लोक गीतां दे प्रोग्राम रंगली धरती तहत अज तुसीं मोहित प्रताप दे गाए लोक गीत सुणोगे। दूजी सभा विच 4 दीआं मुख खबरां तो बाद 4:02 ते प्रोग्राम सुणोगे खेड संसार। शाम 4:30 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे ते शाम 5:30 सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। शाम 6:30 दा समां रहेगा देहाती प्रोग्राम दा। अज इस विच सुणोगे कम दीआं गल्लां, मच्छी पालन की महत्ता, इस बारे जानकारी देंगे डॉक्टर सुखवंत कौर। इस तो इलावा पंजाबी नाटक सुनोगे भुलेखा। कल दे प्रोग्राम मौसम दा हाल ते गीत संगीत भी सुनाया जाएगा। सत्त वज के 40 मिनट ते तुसी सुनोगे साहित्य सुधा। संस्कृत साहित्य विच दसां नौवां दी किरत, इस बारे जानकारी देंगे डॉक्टर सुरेंद्र पाल। सत्त वज के 50 मिनट ते स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनोगे लम्हे। जिंदगी दे फलसफ्यां ते आधारित प्रोग्राम पेश होएगा जिंदगी हसीन है, इस दा समा रहेगा रात 8:00। सवा 8:00 सुनोगे सुरसरिता। साडे दिल्ली केंद्र तों तुसी सुनोगे रात 8:45 ते समाचार संध्या, 9:00 News@9, 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 साहित्य भारती ते रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इस विच भाग लैण वाले कलाकार होणगे HM समिथा ते सिंधु सुचेतन। इस तो इलावा खबरां आपो अपने समय मुताबक प्रसारित कीतियां जाणगियां। DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जरिए दिने 3:00 तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते रात 11:10 ते सौगात प्रोग्राम दा आनंद माणोगे। इस सन अज रात तक प्रसारित किते जाण वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समां।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है।

0: ज्ञान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: की के है तुहाडी लॉटरी निकली है टिकट खरीदी सी नहीं अच्छा तुहानू फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया ते हुण आधार नंबर पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको अजिहा ना करना ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो जागरूक बनो कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
2: आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो पेश कीता जा रहा है प्रोग्राम फौजी वीरां लई। फौजी वीरो अंतराल तो बाद फिर हाजिर होए हैं। तुहाडी नज़र करांगी प्रोग्राम का अगला गीत ये जवानी है दीवानी फिल्म चो लिया गया। आवाज़ां दित्तियां ने रेखा भारद्वाज ते तोछी रैना ने। संगीत निर्देशक जावेद अख्तर।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान सिर्फ मरकजी सरकार के मुलाजमीन को निगरान मुकर्रर किए जाने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इंतखाबी कमीशन को अहलकारों के बारे में फैसला करने का इख्तियार हासिल है। मगरबी बंगाल के दो असम्बली हलकों के 15 मरकजों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं और आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% वोट डाले जा चुके थे। लोकसभा के स्पीकर ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों के नए सिरे से तश्कील की है। भारत और नेपाल ने आइंदा मॉनसून से पहले सैलाब की पेशगोई के मॉडल के बारे में आज तबादले ख्याल किया। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और आज शाम IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को वोटों की गिनती के सुपरवाइजर के तौर पर मुकर्रर करने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने हिदायत दी कि इंतखाबी कमीशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जाए। ये फैसला तृणमूल कांग्रेस के लिए एक धचका समझा जा रहा है, जिसने इस इकदाम को अदालत में चैलेंज किया था। समाअत के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि अफसरान के इंतखाब का इख्तियार इंतखाबी कमीशन के पास है। उन्होंने मजीद कहा कि हर काउंटिंग टेबल पर पहले से ही एजेंट्स, सुपरवाइजर्स और मुशाहिदीन मौजूद होते हैं, इसलिए मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन की मौजूदगी पर एतराज की वजह समझ से बालातर है। कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि रिटर्निंग अफसरान रियासती हुकूमत के मुलाजमीन होते हैं, इसके अलावा दिगर अमले की तकरूरी के जिम्मेदार भी वही होते हैं। कमीशन ने अदालत को मुत्तला किया कि CCTV फुटेज को 45 दिन तक महफूज रखा जाएगा। अपने हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का यादा किया कि चुनाव कमीशन के सर्कुलर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। मगरबी बंगाल में जुनूबी 24 परगना जिले की 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग के दौरान वोट डाले जा रहे हैं। तफसील हमारे नामनगार से।
1: मगरबी बंगाल में मगरा घाट पश्चिम इलाके की 11 बूथों और डायमंड हार्बर हल्के की 4 बूथों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% पोलिंग दर्ज की गई। मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। एक और पेशरफ्त में सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को वोटों की गिनती के सुपरवाइजर के तौर पर मुकर्रर करने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस की अर्जी को खारिज कर दिया था। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीबुर रहमान।
0: केरलम में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। वहां अप्रैल की 9 तारीख को 140 हलकों में वोट डाले गए थे। आला चुनाव अफसर रतन यू केलकर ने बताया कि 43 जगहों पर बनाए गए तमाम 140 वोट शुमारी मरकजों पर सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इस काम के लिए मजमूई तौर पर 15,465 अहलकार तैनात किए जाएंगे, जिनमें रिटर्निंग अफसर, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर, माइक्रो मुशाहिद, वोट शुमारी के लिए निगरान और असिस्टेंट शामिल हैं। सबसे पहले डाक से आने वाले वोटों की गिनती की जाएगी और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में रिकॉर्ड किए गए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों की असरे नौ तश्कील की है। लोकसभा के BJP के मेंबर डॉक्टर संजय जायसवाल को तखमीना कमेटी का सरबराह बनाया गया है। इस कमेटी में ऐवान ज़ेरी के 30 मेंबर शामिल हैं। BJP के ही मेंबर बैजनाथ पांडे सरकारी इदारों से मुतालिक कमेटी के सरबराह होंगे। ये कमेटी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 मेंबरों पर मुश्तमिल है। जनाब बिरला ने लोकसभा के कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट KC वेणुगोपाल को सरकारी हिसाब किताब से मुतालिक कमेटी

सा बड़ा मुकर्र किया है। इस कमेटी में 15 मेंबर लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होंगे। दर्ज फहरिस्त और कबीलों की फलाह बहबूद से मुतालिक कमेटी के सरबरा लोकसभा के बीजेपी के मेंबर फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे। ये कमेटी लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 मेंबरों पर मुश्तमिल होगी। कमेटी की मुद्दत इस महीने की पहली तारीख से अगले साल 30 अप्रैल तक होगी। मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मकानात की फेहरिस्त बंदी और मकानात की गिनती के अमल के लिए कल से फील्ड ऑपरेशन शुरू हो गया है। ये काम इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगा। मर्दमशुमारी 2027 के तहत अज खुद शुमारी की सहूलत दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में कल से शुरू हो गई। ये ऑनलाइन सहूलत इस माह की 15 तारीख तक जारी रहेगी। इसी दौरान बिहार में 2027 की मर्दमशुमारी का पहला मरहला आज से शुरू हो गया है। वहां भी मकानात की फेहरिस्त बंदी की जाएगी। दूसरा मरहला अगले साल फरवरी में शुरू होगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा एमपी संदीप पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में आम आदमी पार्टी के 6 दिगर राज्यसभा अरकान के हमरा बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद पंजाब की सियासत में एक नई हलचल पैदा हो गई। जराये के मुताबिक पंजाब के 2 जिलों में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, ताहम दोनों जिलों के नाम अभी तक सरकारी तौर पर जाहिर नहीं किए गए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। काठमांडू में कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के बारे में मुश्तरका कमेटी की 11वीं मीटिंग जारी है। ये मीटिंग अप्रैल की 30 तारीख को शुरू हुई थी। दोनों मुल्कों के हुक्काम तफसीली तबादले ख्याल में हिस्सा ले रहे हैं और कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के तवील अरसे से चले आ रहे तकनीकी और इंतजामी उमूर पर बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए आफात से मुतालिक फौरी इंतबाही खिदमात फराहम करने की गरज से मुल्क में ही तैयार करदा टेक्नोलॉजी पर मबनी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस निजाम की जांच के लिए आज दोपहर शहरियों के मोबाइल फोन पर सायरन के साथ एक नोटिफिकेशन भेजा गया। जांच के दौरान भेजे गए पैगाम में कहा गया था, अलर्ट सिटीजन्स सेफ नेशन। इस पैगाम पर आवाम की जानिब से कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक आजमाइशी पैगाम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर लोगों को मोबाइल फोन पर ऐसा पैगाम मौसूल हो तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह भारत के मोबाइल पर मबनी आफात से मुतालिक नए मुवासलाती निजाम का पैगाम है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आसाम, मेघालय, सिक्किम, जैली, हिमालयाई मगरबी बंगाल में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला और माहे में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कौमी राजधानी में आज सुबह कम से कम दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यहां हल्की बारिश के बाद दो दिन तक दर्जे हरारत में कमी रही। IMD ने अगले 2 रोज के दौरान गरज चमक के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे ज्यादा रन के निशाने को पार करके जीत हासिल करने का रिकॉर्ड कायम किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान सिर्फ मरकजी सरकार के मुलाजमीन को निगरान मुकर्रर किए जाने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इंतखाबी कमीशन को अहलकारों के बारे में फैसला करने का इख्तियार हासिल है। मगरबी बंगाल के 2 असम्बली हलकों के 15 मरकजों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं और आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% वोट डाले जा चुके थे। लोकसभा के स्पीकर ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों की नए सिरे से तश्कील की है। काठमांडू में कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के बारे में मुश्तरक कमेटी की 11वें मीटिंग में मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। भारत के मौसमियात महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश

0: की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। फौजी वीरो खबरों तो बाद फिर हाजिर होए हैं तुहाडे मनोरंजन लई कुछ होर फिल्मी गीतां दे नाल। तुहाडे नज़र करन जा रही हां जुर्म फिल्म दा गीत, आवाज़ां कुमार सानू ते साधना सरगम दियां। गीत दा आनंद माणो।

0: ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: फिर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ व पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षकों और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र ले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल

0: को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों की मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से LPG की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले

रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाज़ों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताज़ा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए ते नाल दे नाल वेव्स ऐप दे जरिए तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो। रंगली धरती, रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने मोहित प्रताप। आओ सुनदे हां इन्हां दी आवाज च सब तो पहले सुल्तान बाहू।

रंगली धरती प्रोग्राम च हुणे तुसी मोहित प्रताप दे गाया सुल्तान बाहू सुन रहे सी। आओ हुण सुनदे हां इन्हां दी ही आवाज़ च साडा चिड़ियां दा चंबावे बाबला असां उड जाणा।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: रंगली धरती प्रोग्राम आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो पेश किया जा रहा है। अज तुसी मोहित प्रताप के गाए लोक गीत सुन रहे हो। आओ हुण सुनते हैं इन्हां दी आवाज़ च सैफल मलूक।

पूछ लिए कि अजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पै रही है ते वो ज़्यादा ठंडा पानी केड़ा पींदे आ, फ्रिज का जा घड़े का जा फिर होर कोई बाजारों लिया के जिदा मिनरल वाटर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो वैसे तो सारे यही कहेंगे बस बाहरों जो गर्मी चो आई दा तो दिल करता भी फटाफट असी ठंडा पानी फ्रिज का पीए, पर दोस्तों ठंडा पानी थोड़ी देर ले तो चंगा लगता पर फ्रिज का पानी पीने के नाल पता की होंगे, फ्रिज का पानी पीने के नाल सानू बार बार प्यास लगती रहती है क्योंकि असं एक बोतल चाहे पानी की पी लीए फिर साडा मूँह सुकन लग जाता, असं कहने नहीं होर पानी पीए, तो फ्रिज का पानी का नुकसान भी होंगे कि कभी ज असं ज़्यादा ठंडा पानी पी लें साढ़े गले तो इफेक्ट होंगे। तो गर्मियों में घड़े या मटके का पानी पीने के की फायदे हैं इस बारे आप गलबात करते रहेंगे, ये की लाभ ने तो क्यों सानू पीना चाहिए है, तो ये गलबात जारी रहेगी। लेकिन आप कुछ चिट्ठियाँ लै लें, तो साढ़े को जिहड़ी पहली चिट्ठी आई है ये जी वाइट लिफाफे दे विच है, तो ये निकलियाँ जी दो चिट्ठियाँ, दोनों एक ही जगह तो आई हैं, एक ही बंदिया ने भेजिया है, तो लेकिन ये ना इन्होंने की किया है इन्होंने एक पूरे कार्ड वाइट कलर के छपवा ले है, चारों पासे फ्लावर बने हुए आ, पत्ता भी बनया हुआ वो लिखा हुआ सोंग एनी सोंग ऑफ योर चॉइस नाल थैंक यू भी इन्होंने कर दिता। तो ये चिट्ठिया हूँ असं दस दें भी किन्हां दियां, ये चिट्ठी है जी सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी बी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह डाकू ठाकुर सॉरी डॉक्टर अमनदीप सिंह, अनिल शर्मा, ते नाल ही इन्होंने कालका तो भी लिखा है जी शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज ते साहिल बजाज उन्होंने चिट्ठी है, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने कार्ड छपवाए हैं, तो पिछे कार्ड दे जिहड़ा छपवा के ही एड्रैस लिखा हुआ आकाशवाणी जलंधर का, खत लिखने लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो बहुत ही सुंदर तरीके नाल तुसी खत नूं सजाया है, बनाया है, छपवाया है, तो बड़े ही ढंग दे नाल दोनों खत सानू भेजे है वाइट लिफाफे च पा के, खत लिखने लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह साढ़े तुसी प्रोग्राम चिट्ठिया मिठिया के श्रोते बने रहो, अपनिया फरमाइशा भेजते रहो, तो पर इन्होंने इस बार लिखा है कि तुसी कोई भी गीत सुना दिओ। तो एक होर साढ़े कोल खत आया जी, एक खत हैगा सुरिंदर पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो, मोहन सिंह बूक, निशान सिंह बूक, सीरत कौर, कीरत कौर, अमर लाल, दादी जसवंत कौर, सुरिंदर कौर, बलविंदर कौर, राज सिंह मिस्त्री, बलदेव सिंह, पिंड चक सा नेड़े टिड्डी, ते इन्हां ने भी फरमाइश भी लिखी हुई है, लेकिन इन्हां नूं भी असीं जरूर गाना सुनावांगे इन्हां दी पसंद दा भी। ते अगली चिट्ठी साडे कोल आई जी पिंड पंगाला जिला फाजिलका तो, जगतार गिल, गुरमीत गिल, नाजम गिल, सुखमन गिल, कमलदीप गिल, एस के शर्मा, जगतार टेलर होना था, आओ इन्हां सारिआं दी रली मिली फरमाइश ते सुनदे हाँ ये गीत, ये गीत है जी पम्मी बाई जी की आवाज़ दे विच।

का पुनर्गठन किया है। भारत सरकार ने अपने नागरिकां लई तुरंत आफत चेतावनी सेवा लई स्वदेशी टैक्नोलॉजी की वरतों करते हुए अपना सैल प्रसारण प्रणाली शुरू किया है।

चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदार्यो। ये कथन तनासरी राग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी वालों उचारित है, जिस तो भाव है कि चौवां दिशावां दे विच उस अकाल पुरख दा बल आयद है ते सारी सृष्टि दे जीवां उपर उसका कर भाव हथ भाव

हरजन राखे गुर गोविंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बखसंद। आप जी सरवण कर रहे सो भाई बलविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गाया होया ए शब्द। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1101 ते सुभाए मान मारू महला पंजवां सिरलेख अधीन उचारी गई बाणी दी एक पौड़ी विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने कि ओ अकाल पुरख परमेश्वर इच्छा पूरक है, उस पासों जो भी मैं मंगदा हाँ उही कुछ मैनू मिल जांदा है। मेरे सुखां दा दाता ओ दातार प्रभु ही है, उही मेरा पिता है, उही सबना नू दाता प्रदान करदा है। उस प्रभु ने ही मैनू रास भाव पूंजी अपना नाम तन सौंप दिता है, ते मैनू इस सौदे दा वणज करन दे लायक, इसनू विराजण दे लायक बना दिता है। मोहे मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक, ज्ञान रास नाम तन सौप्योन इस सौदे लायक। सरवण करदे हां भाई गुरमीत सिंह शांत अते उन्हां दे रागी जत्थे द्वारा गायन कीता होया ए शब्द।

0: सोई देवदा हर पिता सुखदायक। इस शब्द का गायन किया सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस पौड़ी दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलविंदर सिंह।
1: पौड़ी हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक सहजे सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक औगन को ना चितारदा गल सेती लायक मुँह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक ज्ञान रास नाम तन सौंप्यौन इस सौदे लायक सांझी गुरनाल बहालिया सर्ब सुख पायक मैं नालों कदे ना विछुड़ै हर पिता सबना गल्लां लायक। विचाराधीन ए पावन पवित्र अमृत बचन शहीदां दे सिरताज बाणी के बोहित पंचम गुरदेव साहिब गुरु अर्जन देव जी दे मुखारबिन तों राग मारू की वार अंदर पौड़ी दे रूप विच उचारण कीते हुए हन। सतगुरु जी इन्हां पावन बचना अंदर फरमाउंदे हन हे अकाल पुरख तू सारे जीवां दा पालनहार है तू मेरी माँ भी है पिता भी है मैं एक बालक वांगू सारियां लोड़ां तैथों मंग के पूरियां करदा हाँ तू मेरा कोई औगुण चितारदा नहीं तू मैनू उच्ची आत्मक अवस्था बख्शन वाला है मैं जो जो मूँह तो मंगदा हाँ तू पिता वांगू ओ बख्शदा है। ज्ञान दी दात नाम दी दात रूप सौदा तू मैनू लायक जान के बख्शिया है तुसी मेरी गुरु नाल सांझ कैम कर दित्ती है हे अकाल पुरख पिता

ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर प्रभ जानो नेरे। आप जी सरवण कर रहे सो भाई वरिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता है।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हो गया।

इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ काम करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का ये जलंधर केंद्र है।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਗਾਨ ਵਤਨਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ।

मेरा साइकिल चोरी होया। अरे मूर्ख, साइकिल लेकर गाड़ी देगा, तू क्या जाने मोया। मोया मतलब, मोया मतलब मर जाना, मान मर जाना, अभिमान वो भी मर जाना, इंसान

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विथ मी योर आरजे चेतन। थकान, क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम, एक ऐसा विकार है जिसका कारण अभी तक अज्ञातिक नहीं है। हालांकि यह पहले की किसी संक्रमण से संबंधित हो सकता है। थकान ऐसी स्थिति है जो चाहे महीने या इसमें अधिक समय के लिए बिना किसी स्पष्टीकरण के मौजूद रहती है और याददाश्त संबंधी या एकाग्रता संबंधी समस्याओं के साथ होती है। थकान के जोखिम कारक स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह अधिकांश 40 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को होती है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में करीब 4 गुना अधिक होती है। थकान का निदान 5 से 6 लक्षण के निदान से होते हैं। इसका अपना कोई निश्चित परीक्षण नहीं होता है, इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन इसके लक्षण का उपचार किया जा सकता है और इससे ग्रस्त लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की सलाह दी जाती है। भारत में क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम हजारों लोगों को प्रभावित करता है। यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक प्रचलित है। एक भारतीय अध्ययन के मुताबिक 12% भारतीय महिलाओं को क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम होने का अनुमान लगाया गया है। ये सिंड्रोम शुरू होने की औसत उम्र 30 से 40 वर्ष है। ये कम आयु वर्ग के लोगों में अधिक आम है। इसके लक्षण प्रतिदिन बदल सकते हैं और उनका आना जाना हो सकता है। थकान के बहुत लक्षण होते हैं, लेकिन हर किसी को प्रभावित करने वाले कुछ लक्षण मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे लम्हे प्रोग्राम में, तो सुनते रहिए आरजे चेतन को। तो पहला लक्षण है दोस्तों, अत्यधिक शारीरिक थकान, मानसिक थकान या दोनों। यह स्थिर हो सकते हैं या बार बार इनका आना जाना भी हो सकता है। यह आराम से ठीक नहीं होता। थकान इतनी गंभीर भी हो सकती है कि यह आपको दिनचर्या के काम और सामाजिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करे। कुछ काम करने के बाद अस्वस्थ महसूस करना, नींद की समस्याएं, अलग अलग या एक जगह दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों का दर्द, सर दर्द, एकाग्रता, याददाश्त की समस्या या सही शब्द सोच पाने में समस्या, प्रकाश, शोर या भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील होना, भ्रम, सोचने की क्षमता में विलंब या गुमराह महसूस करना, मांसपेशियों की कमजोरी या समन्वय की समस्या। थकान के अलग अलग लोगों में विभिन्न लक्षणों के संयोजन होते हैं, जैसे चक्कर आना, दिल की धड़कन में तेजी या काम करते समय सांस लेने में तकलीफ, ज्यादा पेशाब आना, मतली या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, शरीर के तापमान में गिरावट, हाथों का ठंडा होना और पैरों में पसीना आना, तनाव के दौरान बुरा महसूस करना, वजन में या भूख लगने में बदलाव। थकान के साथ अवसाद होना आम है और इससे थकान के लक्षण बेहतर हो सकते हैं। थकान से ऐसे लक्षण होते हैं जो अन्य बीमारियों के समान है, विशेष रूप से शुरुआती दिनों में। सालों के अध्ययन के बाद भी थकान का कोई ज्ञात कारण आज तक शोधकर्ताओं को नहीं मिल पाया है। हालांकि लोगों में थकान के साथ कई बीमारियां देखी गई है, लेकिन इसके विकास के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रोग नियंत्रण केंद्र CDC से पता चला है कि शोधकर्ता अभी भी थकान के कारणों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्ययन किए गए कुछ कारकों में शामिल है वायरल संक्रमण। कुछ लोगों को वायरल संक्रमण होने के बाद थकान होती है, इसीलिए शोधकर्ता इसे भी उन कारकों में से मानते हैं जिससे थकान हो सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि एप्स्टीन-बार वायरस, ह्यूमन हर्पीस वायरस, माउस ल्यूकेमिया वायरस थकान के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं

हुई है। थकान से ग्रस्त लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली थोड़ी कमजोर हो जाती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कारण थकान होने के लिए पर्याप्त हो गई है। थकान से ग्रस्त लोगों को कभी कभी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि में उत्पन्न हार्मोन के असामान्य रक्त स्तरों का अनुभव होता है, लेकिन इन असमानताओं का कारण अभी अज्ञात है। थकान के जोखिम को बढ़ाने के कारक अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने लम्हे प्रोग्राम में, तो सुनते रहिए आरजे चेतन को। पहला है आयु। थकान किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन यह सबसे सामान्य रूप से 40 और 50 की उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले थकान ज्यादा होती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि महिलाएं अपने लक्षणों के लिए डॉक्टर के पास अधिक जाती है। तनाव के कारण भी थकान हो सकती है। वर्तमान में थकान के स्पष्ट करना ज्ञात न होने के कारण इसकी रोकथाम के तरीके भी नहीं मिल पाए हैं। हालांकि चिकित्सक ऐसे बचने के लिए कुछ जीवन शैली व बदलाव करने के सुझाव देते हैं, जैसे तनाव को कम करें, अत्यावश्यकता और भावनात्मक तनाव से बचने या उसे सीमित करने की योजना बनाएं, प्रत्येक दिन में कुछ समय आराम करें, प्रत्येक दिन एक ही समय पर सोए व उठे और कैफीन, शराब, निकोटिन न लेने का प्रयास करें। अपनी गतिविधियों का एक स्तर बनाए रखें। बहुत अधिक गतिविधियों के कारक आपको थकान हो सकती है। थकान का निदान करने के लिए कोई परीक्षण नहीं है। इसका निदान करने से पहले आपके डॉक्टर कई अन्य बीमारियों का परीक्षण करेंगे, जैसे नींद के परीक्षण ये निर्धारित कर सकते हैं कि बाकी विकारों जैसे स्लीप एपनिया, पैरों में बेचैनी महसूस होना या अनिद्रा के कारण अपनी नींद में समस्या तो नहीं आ रही है। थकान कई चिकित्सा स्थितियों में एक सामान्य लक्षण होता है, जैसे कि एनीमिया, मधुमेह और हाइपोथायरॉयडिज्म। थकान कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि अवसाद, चिंता, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण है। एक सलाहकार ये पता लगाने में मदद कर सकता है कि क्या इनसे किसी एक समस्या से आपको थकान हो रही है। जैसे थकावट के अन्य कारणों को हटकर परीक्षण करने के लिए टेस्ट, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथि और लीवर के टेस्ट का उपयोग उन विकारों को हटाने के लिए किया जा सकता है जो थकान का कारण हो सकते हैं। थकान से ग्रस्त लोगों में इन परीक्षणों को परिणाम सामान्य होना चाहिए। थकान से ग्रस्त लोगों के लिए सबसे तर्कयुक्त परीक्षण है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो सूजन की अनुपस्थिति को दिखाता है। यदि ESR उच्च या सामान्य श्रेणी से ज्यादा है तो एक अन्य निदान की आवश्यकता हो सकती है। अगर रक्त परीक्षणों में कोई अन्य असामान्यताएं आती है तो आपके डॉक्टर दूसरी परिस्थितियों के लिए परीक्षण शुरू कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको पहले कोई संक्रमण हुआ था या नहीं ये देखने के लिए एंटीबॉडी परीक्षण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा परिश्रम से बचे। जब आप स्वस्थ महसूस करते हैं तो ज्यादा परिश्रम करने से थकान से ग्रस्त लोगों को फिर से अस्वस्थ महसूस हो सकता है। तनाव को कम करें। तनाव में रहने से ऊर्जा में कमी आ सकती है और थकान हो सकती है। मोटापा के कारण भी थकान हो सकता है, इसीलिए इसे संतुलन में रखने के लिए नियमित व्यायाम करें। वेल डियर फ्रेंड्स, दैट वाज अबाउट फटीग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन अस एंड हाउ टू अवॉइड इट। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेस प्रोग्राम ऑफ लम्हे विद योर आरजे चेतन। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी।

0: केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਰਿਤਾ ਚ।

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ 8:45 ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9, 9:15 ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 9:30 ਸਾਹਿਤ ਭਾਰਤੀ, 10 ਸੰਗੀਤ ਕਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ HM ਸਮਿਥਾ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਸੁਚੇਤਨ ਔਰ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੋਇਲਨ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर IED विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त और BCCI ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 डाक मतपत्रों से शुरू होगी।
3: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से

0: 87.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 852,690 मतदाता है जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज C.DOT जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस C.DOT की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने की देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि CBS का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद

0: उमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: आपदा को हम अवसर में बदलें, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाएं, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
0: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री हर सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
2: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड़ और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की, जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
3: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं। इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं। 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई है, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे प्रदेश में 3,90,000 गणना ब्लॉक बने।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा, जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। चेन्नई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। डेनमार्क में टॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य के

0: उपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट में उतरेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के मुताबिक परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े, जबकि पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर एक आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त हुए और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Nearly 90% voter turnout recorded in re-polling at 15 booths of 2 assembly constituencies of West Bengal. Counting of votes on Monday for assembly polls in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and Puducherry. Election Commission deploys additional counting observers and police observers in West Bengal. Government launches cell broadcast system to strengthen India's emergency communication systems and enhance public safety infrastructure. 4 security personnel killed in an IED blast near Kanker Narayanpur district border in Chhattisgarh. Renowned lyricist Prasoon Joshi appointed as chairman of Prasar Bharati. And in cricket, BCCI announces Indian squad led by Harmanpreet Kaur for ICC Women's T20 World Cup. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Mograghat, Poshchim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Repolling remained largely peaceful across the 2 assembly segments. The repolling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal, covering 152 seats, was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring that the counting process is conducted in a secure, peaceful, intimidation-free and transparent manner. However, it clarified that police observers will not enter the counting halls under any circumstances on the day of vote counting. In Tamil Nadu, preparations are in full swing for the counting of votes for assembly elections to be held on Monday. More from our correspondent.
2: The Election Commission held a training on the counting procedures for

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के अंक में संपादकीय में हम बात करेंगे अशांत समय में वैश्विक शांति के संदर्भ में महात्मा बुद्ध की प्रज्ञा और कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्य में साम्य के बिंदु। हमारी अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में कुछ विशेष टिप्पणियां। उसके बाद हम बात करेंगे जनजातीय भाषाओं के साहित्य और उनमें बसी मनुष्य की आदिम चेतना के विषय में। और हमारी अंतिम प्रस्तुति होगी आकाशवाणी में उप महानिदेशक और वरिष्ठ प्रसारक रहे के नायर की पुस्तक उसने कुछ मुझसे कहा पर चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ होंगी उनकी पुत्रियां सीमा सागर और सुजाता सहाय।

जब हम विश्व शांति की बात करते हैं तो इतिहास और साहित्य हमें ऐसे अनेक स्रोत प्रदान करते हैं जहां पर मानवता की सबसे उज्जवल आकांक्षाएं अभिव्यक्त हुई हैं। आज जब हम चारों ओर देख रहे हैं, युद्ध की आहटें हैं, भय की परछाइयां हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच दीवारें ऊंची होती चली जा रही हैं, ऐसे में रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य हो या महात्मा बुद्ध का दर्शन और उनकी प्रज्ञा, दोनों ही मनुष्य के भीतर करुणा, सह अस्तित्व और आत्मिक संतुलन की स्थापना पर बल देते हैं। कविगुरु टैगोर की बात करें तो वो केवल बंगाल के कवि नहीं थे, केवल भारत के नहीं थे, वे उस समूची मानवता के कवि थे जो सीमाओं से परे जाकर सोचती है और जो प्रेम को ही जीवन का सत्य मानती है। अशांत समय में टैगोर का काव्य एक दीपक की तरह है जो ये नहीं कहता कि अंधेरा नहीं है, पर ये अवश्य कहता है कि प्रकाश संभव है। टैगोर ने गीतांजलि में लिखा, मनुष्य की आत्मा की पुकार ईश्वर तक पहुंचती है, पर वो ईश्वर किसी मंदिर में नहीं, वो श्रमिक के पसीने में, किसान की माटी में और बच्चे की हंसी में बसा है। ये विचार कितना क्रांतिकारी था उस समय के लिए और आज भी कितना ताजा है। उनकी कविता शांति का केवल आह्वान भर नहीं करती, वो शांति की जड़ें खोजती है, वो जड़ें जो मनुष्य के भीतर हैं, करुणा में, सह अस्तित्व में, प्रकृति के साथ तादात्म्य में, और वही महात्मा बुद्ध के उपदेशों में अहिंसा, मध्यम मार्ग और मैत्री जैसे सिद्धांत विश्व शांति की ठोस आधारशिला रखते हैं। बौद्ध साहित्य

खासकर धम्मपद हमें ये सिखाता है कि द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम ही उसका अंत करता है। टैगोर की रचनाओं में बार बार एक ऐसे विश्व का स्वप्न उभरता है जहां सीमाएं नहीं संवाद हो, जहां भय नहीं विश्वास हो। उनकी ये प्रसिद्ध प्रार्थना मन हो निर्भय जहां, दरअसल एक ऐसे वैश्विक समाज की कल्पना है जो शांति और नैतिकता पर आधारित है। महात्मा बुद्ध की दृष्टि और टैगोर के काव्य में एक गहरा साम्य है, मानव केंद्रित चिंतन, अहिंसा की अनिवार्यता और आंतरिक शांति को बाहरी शांति का आधार मानना। आकाशवाणी जो दशकों से विचार और संवेदना का सेतु रही है, ऐसे विमर्शों के माध्यम से न केवल अतीत की धरोहर को संजोने का प्रयास कर रही है, बल्कि वर्तमान को भी एक नई दिशा देना चाहती है, संवाद, सह अस्तित्व और शांति की दिशा में। साहित्य भारती की ओर से ये संपादकीय महात्मा बुद्ध की प्रज्ञा और विश्व कवि को नमन है, जिनकी वाणी में वैश्विक शांति का स्वर आज भी जीवित है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर, 90 वर्षों में कितनी आवाजें, कितने शब्द, कितने स्वप्न इस माध्यम ने सजोए हैं, सवारे हैं। साहित्य का ये विस्तार आकाशवाणी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्ला।
1: एक सिलसिला यहाँ शुरू हुआ था कि एक कहानी चुनिए और उसका एक पात्र चुनिए साहब, उस पर एक वार्ता 10 मिनट की। तो जैसे मुझसे कहा गया तो मैंने तीसरी कसम कहानी चुनी, जिस पर फिल्म बनी है रेणु जी की, तीसरी कसम कहानी चुनी और हीरामन जो उसका कैरेक्टर है वो पात्र चुना मैंने। तो ये एक सिलसिला था उनका पूरा कि अपने से आप कहानी चुनिए, लेकिन बताना पड़ता था कि हमने ये कहानी चुनी है, ये पात्र, ताकि रिपीटिशन ना हो। ये इस तरह के कार्यक्रम हुए। फिर साहित्यकारों पर वार्ताएं हुई, कहे कि साहित्यकार चुनिए साहब। फिर कहना आप उर्दू के साहित्यकारों पर लिख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब उर्दू मजलिस जो है, अब वह हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य सब अब दूरदर्शन पर तो धारावाहिक बाद में शुरू हुए हैं, रेडियो ने पहले शुरू कर दिया धारावाहिक। एक धारावाहिक कार्यक्रम चला था यहाँ, जिसमें धारावाहिक कार्यक्रम ये चला था कि एक लेखक और उसकी कोई रचना, वो होगा आधा घंटे का, रिकॉर्डिंग आधा घंटे की होती थी, लेकिन 5-5 मिनट के 6 एपिसोड होते थे। मतलब 6 दिन तक, मंडे टू सैटरडे, वो 5-5 मिनट सुनाया जाएगा। तो एक लेखक चुनना है आपको और उसकी एक किताब चुननी है, तो उसको आपको 6 एपिसोड में बांटना है और 5-5 मिनट के हों, जिसमें लेखक के बारे में और एक जो कृति चुना है आपने उसके बारे में जानकारी श्रोताओं तक पहुंच जाए। ये एक धारावाहिक शुरू किया गया। ये जब चुना गया तो हमसे पूछा गया, हमने उनसे कह दिया कि मैं लेखक तो कालिदास और रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, जिनका नाटक है मुझे। तो फिर मैंने 2 जो एपिसोड है वो तो मैंने लेखक के बारे में लिखा। तो रिकॉर्डिंग जब हो गई तो जब प्रसारण उसका हुआ तो हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं रमानाथ अवस्थी, उठकर गले लगा रहे हैं मुझे, सुना तुमने क्या साहब लिखा है। तो मैंने देखा कि आकाशवाणी कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है कि विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक कृतियों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में कैसे जन जन तक पहुंचा रहा है। क्योंकि जिस जमाने में नहीं था टेलीविजन, और जिस जमाने में यह नहीं था, उस जमाने में तो एक ही माध्यम था ना कि लोगों तक पहुंचने का, वो श्रव्य माध्यम था, और श्रव्य माध्यम था रेडियो, ट्रांजिस्टर, तो आकाशवाणी। तो यह इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और मुझे यह देखकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि वो आज भी जारी है। आकाशवाणी न केवल सक्रिय है बल्कि ये भी भूमिका को अदा कर रहा है और आज भी साहित्य को महत्व उतना ही दे रहा है। आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि हम इसका भाग रहे हैं, हिस्सा रहे, अंग रहे हैं।

0: 90 वर्षों का आकाशवाणी का सफर ये महज एक संख्या नहीं, बल्कि 90 वर्षों की सेवा, 90 वर्षों की साधना और 90 वर्षों की आवाजों का उत्सव है। भारत की आत्मा का संबंध उन भाषाओं से बहुत गहरा जुड़ा है जिन्हें हम जनजातीय भाषाएं या बोलियां कहते हैं। संथाली, गोंडी, भीली, मुंडारी, कुड़ुक, बोडो ये सिर्फ भाषा या बोलियां नहीं है, ये जीवन दर्शन है। इन भाषाओं के साहित्य में मनुष्य की वो आदिम चेतना है जो आज के भौतिक युग में हम खोते जा रहे हैं। आदिम चेतना यानी वो बोध जो प्रकृति को माँ मानता है, जो नदी में देवत्व देखता है और जो पशु पक्षियों से संवाद करता है, जो धरती को केवल संपत्ति नहीं एक जीवित सत्ता मानता है। संथाली की लोक कथाओं में स्त्री की स्वतंत्रता का उत्सव है। गोंडी गीतों में वन और मनुष्य के बीच का वो रिश्ता है जो आज के पर्यावरण संकट के समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, जनजातीय भाषाओं का साहित्य और उनमें बसी मनुष्य की आदिम चेतना।
1: एक प्राचीन कहावत है, जब एक वृद्ध की मृत्यु होती है तो मानो एक पूरा पुस्तकालय जलकर राख हो जाता है। यही बात भारत की सैकड़ों जनजातीय भाषाओं के बोलने वालों पर भी उतनी ही लागू होती है।
2: भारत की जनजातीय भाषाओं में बसा साहित्य कागज के सफेद पन्नों का मोहताज नहीं रहा। ये तो एक ऐसी वाचिक विरासत है जो पुरखों की सांसों से होती हुई हमारी रगों तक पहुंचती है।

0: जब हम इन कथित हाशियों की भाषाओं के भीतर उतरते हैं तो पता चलता है कि यहाँ का साहित्य एक जीवित ज्ञान परंपरा है।
1: अरुणाचल की मिश्मी कहानियों में हवाओं के रुख को पहचानना हो या नीलगिरी की इरुला जनजाति के गीतों में छिपी जड़ी बूटियों का गहन रहस्य जानना हो तो प्रकृति के साथ जीवन ही एकमात्र तरीका है। चाहे वो लद्दाख के ब्रोकपा समुदाय के हजारों साल पुराने आर्य गीत हों, अंडमान की ओंगे जनजाति की लहरों को समझने वाली कथाएं, या मेघालय की खासी लोक कथाओं का मातृसत्तात्मक दर्शन, ये सब हमारी सामूहिक चेतना के शिलालेख हैं।
0: आज हमारे साथ इस विषय पर जुड़ रही हैं जनजातीय साहित्य और संस्कृति की जानी मानी विशेषज्ञ दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उमा मीणा।
2: सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जनजाति जो शब्द है ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक शब्द है, जबकि लोक प्रचलन में आदिवासी शब्द का प्रयोग होता है। आदिवासी समुदायों ने हजारों सालों के अपने जीवन के अनुभव, जो उनकी ज्ञान परंपरा जिसकी हम बात करते हैं उसमें उनके जीवन के अनुभव हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण उसका ज्ञान है, ये ज्ञान है उनकी कहानियों में, गीतों में, परंपराओं में, उनकी जीवन शैली में, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है। मुख्य धारा का जो साहित्य है उसे दो भागों में हम मोटे तौर पे विभाजित करते हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लेकिन आदिवासी बुद्धिजीवी अपने साहित्य को हिंदी के लोक और अंग्रेजी के फोक लिटरेचर से अलग उसे ओरेचर कहते हैं, ओरल लिटरेचर, जो कि पुरखौती साहित्य है। और इनका जो मौखिक ज्ञान है ये लिपिबद्ध करने का काम अंग्रेज अध्येताओं ने किया था। 600 से ज्यादा आदिवासी भाषाएं हैं, 100 से अधिक भाषाओं में लिखित परंपरा है। बहुत सी ऐसी भाषाएं भी हैं जिनकी लिपि नहीं थी लेकिन दूसरी लिपि का इस्तेमाल किया गया, जिसे पूर्वोत्तर में बहुत सारा साहित्य रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया है। कुछ उदाहरण मैं देती हूँ। देखिए, मिशनरी पीओ बोर्डिंग ने संताल पुरखौती कथाओं का रोमन लिपि में प्रकाशन किया था 1924 में। WG आर्चर ने 1945 में संताल पुरखौती गीतों का संग्रह किया था। और अभी 2006 में अन्विता अब्बी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लुप्त प्राय स्वदेशी भाषाओं पर व्यापक शोध कार्य किया गया है। फादर हाफमैन द्वारा संकलित मुंडा गीतों का भी यहाँ जिक्र करना जरूरी है। जब मैं कहती हूँ कि एक भाषा में एक समाज का ज्ञान

संरक्षित होता है। तो मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी। राजस्थान क्योंकि एक मरुस्थल क्षेत्र है, वहां बरसात का बहुत महत्व है। आप देखेंगे कि राजस्थानी भाषा में हर एक माह में होने वाली बारिश के लिए एक अलग शब्द है। वहां ऊंट के लिए 270 से भी ज्यादा पर्यायवाची शब्द मौजूद है। तो ऐसे में राजस्थानी संस्कृति को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना और उसको सहेजना बहुत जरूरी है। अंडमान द्वीप समूह में एक भाषा है बो, जिसके बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। अंत में बोआ नाम की एक महिला बची जो उस भाषा को बोलती थी, समझती थी। उस भाषा का संरक्षण नहीं किया गया और 2010 में उसकी मृत्यु के साथ वो भाषा खत्म हो गई। आदिवासी साहित्य में स्वानुभूति बनाम सहानुभूति की बहस नहीं है, वहाँ अनुभव की आधिकारिकता पर बल है। और इसीलिए आप देखेंगे कि गैर आदिवासी लेखक भी इसमें शामिल है आदिवासी साहित्य में, जिसे

0: आदिवासी साहित्य में स्वानुभूति बनाम सहानुभूति की बहस नहीं है, वहाँ अनुभव की आधिकारिकता पर बल है, और इसीलिए आप देखेंगे कि गैर आदिवासी लेखक भी इसमें शामिल है आदिवासी साहित्य में, जिसे संजीव हैं, राकेश कुमार सिंह, महुआ मांझी, गणेश देवी, और इसके साथ ही आप देखेंगे 90 के दशक के बाद आदिवासी भाषाओं में जो लेखक हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, रामदयाल मुंडा, हेराल्ड तोपनो, वॉल्टर भेंगरा, मंगल सिंह मुंडा, महादेव टोप्पो, निर्मल मिंज, अनुज लुगुन, हरिराम मीना, शंकरलाल मीना, और स्त्रियां भी आदिवासी लेखन में बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। आदिवासी समाज का चित्रण उनकी रचनाओं में बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। इनमें आप देख सकते हैं मंजू ज्योत्सना, वंदना टेटे, सरोज केरकेट्टा, एलिस एक्का, जसिंता केरकेट्टा, वासवी कीड़ो, जिन्होंने आदिवासी जो योद्धा महिलाएं हैं उनके बारे में एक बहुत अच्छी किताब उनकी निकली है, शांति खलको है, बिटिया मुर्मू है, सुषमा असुर है, बहुत सारे नाम हैं। सुशीला सामत जो कि पहली आदिवासी कवित्री और संपादक हैं और 1930 के दशक में लिख रही थी, जब महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रही थी, लेकिन इनका कहीं जिक्र नहीं मिलता। सीता रत्नमाला जिनकी आत्मकथा जो अभी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगी है, 1968 में उनकी आत्मकथा लिखी गई थी, और उससे पहले बहुत सारी कविताएं और नाटक उन्होंने लिखे हैं जो कि विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे थे, लेकिन हिंदी के लोग उससे परिचित नहीं थे। हिंदी में परिचय तब होता है जब अश्विनी कुमार पंकज उनकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद करते हैं।
1: अकादमिक समझ के साथ साथ इस साहित्य को जमीनी स्तर पर सहेजने की कोशिश भी उतनी ही जरूरी है। इसी सिलसिले में हमारे अगले मेहमान डॉक्टर करमचंद हंसदा बीते कई वर्षों से जनजातीय समुदाय के बीच काम कर रहे हैं।
2: जब हम जनजातीय साहित्य को करीब से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यह महज शब्दों का मेल नहीं बल्कि हमारे समाज के जीने का ढंग है। अक्सर हम बिरसा मुंडा को एक योद्धा के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में एक नए विचार विशेष की शुरुआत की थी जो सादगी और प्रकृति की पूजा पर आधारित था। साहित्यिक दुनिया में अगर हम देखें एलिस एक्का का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। वो हिंदी की पहली जनजातीय महिला कहानीकार मानी जाती है। वहीं निर्मला पुतुल जब वो आधुनिक समाज से सवाल करती है कि आपकी प्रगति हमारे विनाश की कीमत पर होगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में तैमसुला आओ जैसे लेखक हैं जिन्होंने नागालैंड की लोक कथाओं को दुनिया के सामने रखा। यह लेखक हमें सिखाते हैं कि जनजातीय समाज में कोई सुपर हीरो नहीं होता, यहाँ पर समुदाय ही नायक है। हमारी कहानियों में चींटी से लेकर हाथी तक और पहाड़ से लेकर नदी तक सबका बराबर का सम्मान है। आज जब हम जनजातीय साहित्य महोत्सवों की बात करते हैं तो हम दरअसल इसी सामूहिक चेतना को बचा रहे होते हैं। यह साहित्य समाज को बताता है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं है। अंत में यही कहूंगा कि इन आवाजों को सुनना और पढ़ना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है।
3: जनजातीय साहित्य क्रांति की गर्जना, चेतना की पुकार, सशक्तिकरण का शंखनाद और प्रकृति के साथ मनुष्य के उस शाश्वत संवाद की अभिव्यक्ति है जो सदियों से अटल है।
1: असल में ये वो साहित्य है जहां एलिस एक्का की संवेदनाएं बोलती हैं और निर्मला पुतुल की कविताएं हमें उन इलाकों में ले जाती हैं जहां हमारी आदिम सभ्यता के गीत बस गए हैं। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
3: और मैं प्रांजल।
4: अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आकाशवाणी में उप महानिदेशक और वरिष्ठ प्रसारक रहे स्वर्गीय के नायर की पुस्तक उसने कुछ मुझसे कहा पर एक लघु चर्चा। एक किताब जब किसी के जीवन की कहानी हो तो वो केवल साहित्य नहीं रहती, वो एक धरोहर बन जाती है। उसने कुछ मुझसे कहा ये शीर्षक ही अपने भीतर एक पूरा संसार समेटे हुए है। किसने कहा, क्या कहा और सुनने वाला कौन था? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम आज इस पुस्तक के सबसे करीबी साक्षियों से बात कर रहे हैं। उनकी बेटियां सीमा सागर और सुजाता सहाय, जिन्होंने विनोद सहगल के संगीत निर्देशन में अपने पिता की इन रचनाओं को सुरों में भी बांधा है। सुनते हैं ये बातचीत। सुजाता जी, आप पहले तो इस किताब के बारे में ही हमारे श्रोताओं को बताइए।
5: पापा

0: सब जानते हैं कि वो बहुत ही मशहूर ब्रॉडकास्टर थे, बहुत नामी, बहुत ज्ञानी, बहुत जाने माने, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता था कि वो लिखते थे। एक दौर था जब वो मुशायरों में जाते थे बाकायदा, लेकिन फिर वो दौर कुछ दिनों बाद नहीं रहा, पर उनका लिखना चलता रहा। वो जो लिखते थे वो खुद के लिए लिखते थे, वो किसी को बहुत आसानी से ना सुनाते थे ना वो शेयर करते थे। जब उन्हें लगता था कि सामने वाला इस लायक है कि उसको सुनाया जाए तभी वो सुनाते थे। तो डायरियां थी उनकी बहुत सारी जिनमें वो लिखते थे, वो डायरियां खो गई, सामान इधर से उधर हुआ, तो जो भी हमें मिला, हमें कोई राइटिंग पैड, जिस उनको जहां जगह मिलती थी वो थोड़ा सा लिख लेते थे, तो जो जो हमें मिलता गया हम उसको इकट्ठा करते गए। परेशानी ये थी कि वो उर्दू में था, एक और परेशानी ये थी कि उन्हें स्ट्रोक हुआ 98 में, तो उसके बाद उनका हाथ हिलता था लिखने में, तो वो आम आदमी जो उर्दू पढ़ लेता था वो नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि वो जो लिखावट थी रही उसमें बहुत शेकी था। तो बड़ी किस्मत से हमें एक शायर साहब मिले, तो उन्होंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने किन्हीं के साथ, ये बहुत हाल ही की बात है, अभी शायद पिछले महीने की, उन्होंने उसको हिंदी लिपि में किया, मेरी बहन ने उसको एक किताब का रूप दिया, क्योंकि हम चाहते थे, इतना खूबसूरत वो लिखते हैं, आप भी पढ़ेंगी तो आपको एहसास होगा कि कहाँ जा रहा है ये, तो आपको भी वो सोचने पे मजबूर करता है। तो हम चाहते थे कि ये जो भी उन्होंने लिखा है वो दुनिया तक।
1: सीमा जी, ये यात्रा कैसे शुरू हुई कि आपको कुछ पुराने लिखे हुए उनके कुछ मजमून मिले जिनको आपने सोचा कि आपको ये, तो पहले तो आपको लिप्यांतरण ही कराना पड़ा इसका, कि वो उर्दू में थी, फिर आपको इसे देवनागरी में करना था, अच्छी खासी मशक्कत का काम था। तो सीमा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जब आपके हाथ लगा, आपके पिताजी होते तो क्या चाहते इसे पब्लिश करना या नहीं?
2: पापा शायद ना चाहते, क्योंकि वो बहुत संकोच करते थे, जैसे सुजाता ने बताया कि अपनी शायरी भी वो बहुत गिने चुने लोगों को सुनाते थे। लेकिन मुझे एज अ डॉटर, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये हमको दुनिया को, दुनिया के साथ ये शेयर करनी चाहिए इनकी शायरी, और इरादा हमारा बिल्कुल पक्का था, तो ये तो हमको काम करना ही था, और ये बहुत खूबसूरती से ये काम हुआ है।
1: और लगे तो ये सवाल भी पूछते चले, जैसे अभी हमें मौका मिला था कि कुछ दिनों पहले आपने जो एक आयोजन किया जहां आपने इनमें से कुछ चुनी हुई गजलों को, नज्मों को आपने संगीत में ढाला है और आपने गाया, आप दोनों बहनों ने उसमें स्वर दिए हैं अपने, और साथ में विनोद सहगल जी का भी साथ आपको मिला। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, आपको क्यों लगा कि ये संगीत में इसे ढाला जाना चाहिए, क्या इसके पीछे मोटिवेशन रहा?
2: जी बिल्कुल, हम दोनों को ये लगा कि इसे संगीत में डालना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि संगीत बहुत लोगों तक पहुंचता है। सब लोग शायद पोइट्री, शायरी को ना पढ़ना चाहें, और लेकिन संगीत तो हर कोई सुनता है, और लगा कि इसको अगर हम संगीत में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये बहुत लोगों तक पहुंचेगा। इसमें जिनका सबसे बड़ा हाथ है वो है विनोद सहगल जी, जो अचानक ही एक प्रोग्राम के दौरान लखनऊ में मेरे फादर को मिले, और क्योंकि वो अंबाला में रहते हैं, मैं उनसे अक्सर मिलती रहती हूँ, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि सर आप जा रहे हैं लखनऊ, तो आप उनको, मेरे फादर को ज़रूर मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा उन्हें मिलके। तो वो, उन्होंने वक्त निकाला, वो घर गए, उनसे मिले, और बातचीत के दौरान ही उनको ये रियलाइजेशन हुई कि ये तो बहुत अच्छा लिखते हैं, और ये पोइट्री ऐसी है, इतने खूबसूरती से मीटर में सेट है, तो इसको मैं, इसमें मैं म्यूजिक में इसको कंपोज कर सकता हूँ, वो ख्याल उनको आया। और बाद में जब वो वापस लौटे अंबाला, तो उन्होंने ऐसे बात करा, इसका जिक्र किया, तो मुझे लगा कि हाँ क्यों ना हम ये काम करें। और देखते ही देखते वो खुद कहते हैं, ये उनके शब्द हैं, कि ये नैयर साहब की पोइट्री है, मैं इसे इतना प्रभावित हुआ कि मेरे अंदर से धुन अपने आप बनती चली गई, और ये तो पोइट्री का कमाल है कि इतनी खूबसूरत धुनें बन गई, और जब बन गई तो मुझे ख्याल आया कि इसको हम रिकॉर्ड क्यों ना करें।
1: आप लोग क्योंकि बहुत गहरे जुड़े हैं, इससे ज्यादा गहरा जुड़ाव क्या होगा, आप पैदा हुए उसी
0: माहौल में,
1: छत्र छाया में, हाँ। तो आप ये बताइए कि आकाशवाणी का एज एन इंस्टीट्यूशन क्या था, अभी क्या है, और आपको क्या उम्मीदें हैं?
0: हम तो पले बड़े इसमें, बच्चों के प्रोग्राम करने

0: से फिर थोड़े बड़े हुए तो वेस्टर्न म्यूज़िक प्रोग्राम करने से, फिर हर रात हम इंतज़ार करते थे हवा महल का तो बहुत सारे प्रोग्राम्स और पापा के प्रोग्राम्स तो हम सुनते ही थे, तो रेडियो तो चलता ही रहता था, कभी बंद ही नहीं होता था घर पे।
1: जो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज ऑफ डिक्शन जो आकाशवाणी में है, जो आपके अनाउंसर्स हैं, आपके जो प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं, जो आप भाषा यूज़ करते हैं और किस तरह से आप उस उन शब्दों को कहते हैं। हम मुझे याद है बचपन में जब मैं कोई गलत वर्ड यूज़ करती थी, मेरे फादर मुझे इमिजिएटली टोकते थे कि तुम ये गलत कह रही हो, और फिर मैं ध्यान से आकाशवाणी का प्रोग्राम सुनती थी कि अच्छा ये लफ्ज कैसे कहा गया, और मैं उससे सीखती थी। दैट वॉज माई बैरोमी। आई लर्न लैंग्वेज, आई लर्न डिक्शन फ्रॉम कल्चर। सो आकाशवाणी इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया। जो युवा पीढ़ी है, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे है कि वो इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा को आगे ले जाएं और बाखूबी ले जाएं। ये बहुत जरूरी बात है।
0: बस एक आखिरी बात, आपने पूछा कि पापा, क्या पापा चाहते कि ये किताब छपे, तो मैं कहती हूँ शायद वो मना करते, ऊपर से कहते नहीं, ये मैं नहीं चाहता, लेकिन अंदर से वो बहुत
1: वो दिली
0: खुश
1: दिल
0: होते
1: बहुत खुश होते हैं कि ये
2: खुश
1: छप गई
2: होते।
1: है।
2: नहीं,
1: बहुत
2: हाँ,
1: खुश।
2: आपसे एक दरख्वास्त है कि आप लोग एक एक अपनी पसंदीदा कविता या नज्म, अगर कुछ उसकी कुछ पंक्तियां आप हमें पहले सुझाता जी।
0: इसको पढ़ के मैंने सोचा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है वो पहली बारिश, जब जब आई बरखा रुत की पहली बारिश, भीगी भीगी बोराई सी चले हवाएं, चेहरे को छूकर निकले गीले गीले पोरों से, पलकें सहलाएं बरखा भीगी, सड़क लगे जब खाली खाली, तभी अचानक एक कोने में हंसते गाते धूम मचाते, सावन की पहली बूंदों का शगुन मनाते आ जाएं अपने साईं जी, लंबी पलकें प्यारी आंखें सावन चेहरा, चेहरे पर झूमे लहराए सावन, भीगी लंबी काली घट अलबेली हाथ में चिमटा, ताल से ताल मिलाएं। इसको पढ़ के मैंने सोचा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि हम जब बारिश आती है तो हम निकलते बाहर, नहाते हैं, खेलते हैं, कूदते, ये साईं जी कौन है?
2: कौन है?
0: मुझे लगा ये किसके
2: क्योंकि
0: बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा शायद साईं
2: साई
0: जी
2: जी,
0: के बारे
2: हाँ।
0: में बात कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि पुराने जमाने में जब बारिश होती थी तो एक, उनको कहते थे मलंग, वो आते थे, और उनका अटायर ये होती थी, लंबे बाल, हाथ में चिमटा, यहाँ रस्सियाँ,
2: हाँ।
0: कमर में रस्सियाँ, और वो नाचते गाते थे बारिश में, जैसे वो बारिश का ऐलान करने आते थे। तो
2: क्या
0: मुझे
2: बात
0: इतनी खूबसूरत ये
2: है
0: बात लगी, और जो है नहीं अब ना।
1: जिस पर ये किताब का शीर्षक भी दिया गया है, उसने कुछ मुझसे कहा।
2: बिल्कुल, सीमा जी स्वागत है।
1: उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, एक परिंदा सा उड़ा हो जैसे,
2: क्या बात है,
1: नूर ही नूर फजा हो जैसे, फिर किसी लब पे दुआ हो जैसे, आज लगता नहीं पहले जैसा, आज लगता नहीं पहले जैसा, कोई पैबंद लगा हो जैसे, अक्स आईने में बदला बदला, अक्स आईने में बदला बदला, सामने गैर खड़ा हो जैसे,
2: वाह।
1: दूर जाते हुए कदमों के निशा, दूर जाते हुए कदमों के निशा, आके वो लौट गया हो जैसे,
2: क्या हुआ,
1: रात ने चौंक के देखा किसको, रात ने चौंक के किस देखा किसको, एक शोला सा उठा हो जैसे,
2: वाह।
1: ओस के कांपते मोती थामे, ओस के कांपते मोती थामे, बर्फ ही दस्ते दुआ हो जैसे,
2: क्या बात है,
1: वो ही मानूस पुराना बरगद,
0: बरगद
1: वो ही मानूस पुराना बरगद, कोई
0: कोई
1: कुछ
0: कुछ
1: सोच
0: सोच
1: रहा हो
0: रहा हो
1: जैसे।
2: जैसे, क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका, आप यहाँ आए, आपने हमें, हमारे सुनने वालों को कम से कम के नैयर साहब आपसे कुछ तारुफ तो कराया जो नहीं
0: जी,
2: जानते थे उन्हें, और जो हम जो नाम से उन्हें जानते थे उनसे थोड़ा और मिलवाया। बहुत शुक्रिया आप सबका,
0: आपका
2: इन्होंने
0: बहुत
2: आपका
0: शुक्रिया
2: भी
0: कि
2: बहुत।
0: हम।
2: उसने कुछ मुझसे कहा, नैयर साहब की खुद की आवाज़।

जिसने उनसे जीवन भर संवाद किया और अब वो संवाद इस किताब के पन्नों में उतर आया है, सबके लिए, हमेशा के लिए। साहित्य जीवित रहे, भाषाएं जीवित रहे और 90 वर्षों का आकाशवाणी का ये सफर यूं ही चलता रहे, इसी कामना के साथ साहित्य भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आज के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में हम सिंधु सुचेतन और H.M. स्मिता का वायलिन युगल वादन प्रस्तुत कर रहे हैं। एक विशिष्ट संगीत परंपरा में जन्मी ये बहनें सुप्रसिद्ध वायलिन वादक विद्वान A.V. वेंकट नारायण की पौत्रियां हैं, जो संगीत कला निधि मैसूर टी चौड़ैया के शिष्य थे। इस समृद्ध विरासत ने इनके लिए सुदृढ़ आधार प्रदान किया, किंतु निरंतर साधना और उत्कृष्टता की अनवरत खोज ने इन्हें आज के सफल कलाकारों के रूप में प्रतिष्ठित किया है। गान कला भूषण H.K. नरसिम्हा मूर्ति तथा विदुषी H.N. राजलक्ष्मी के मार्गदर्शन में और विदुषी पुष्पा श्रीनिवासन, श्री T.K. श्रीनिवासन तथा विख्यात वायलिन वादक विद्वान H.N. भास्कर के सानिध्य में इन्होंने ऐसी शैली विकसित की है जिसमें गहनता और गतिशीलता का सुंदर समन्वय है। आपका संगीत एक अनुभूति है जहां भावपूर्ण अभिव्यक्ति और तकनीकी कौशल का अद्भुत संगम होता है। वायलिन पर आपकी सशक्त पकड़ आपकी प्रस्तुति को एक विशिष्ट आयाम देती है, जिससे आपका संगीत अत्यंत भावपूर्ण और आकर्षक बन जाता है। अपनी कला के माध्यम से ये बहनें ऐसा संगीत अनुभव सृजित करती हैं जो श्रोताओं के हृदय को स्पर्श कर जाता है। अपनी उत्कृष्टता के लिए सम्मानित सिंधु और स्मिता आकाशवाणी बेंगलुरु की ए ग्रेड कलाकार हैं और उन्होंने गायन तथा वायलिन दोनों ही विधाओं में लगातार सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए हैं। आपकी कला को मद्रास म्यूजिक अकादमी, अनन्या युवा पुरस्कार, युवा पुरंदर पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित M.S. सुबुलक्ष्मी फेलोशिप सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सिंधु और स्मिता केवल कलाकार ही नहीं बल्कि एक समृद्ध परंपरा की संवाहक हैं, जो कर्नाटक संगीत की अमर धरोहर को गरिमा, नवोन्मेष और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड H.M. स्मिता। Born into a distinguished musical lineage, the sisters are the granddaughters of the legendary violinist Vidwan A.V. Venkata Narayana, a direct disciple of Sangeeta Kalanidhi Mysore T. Chaudhaya. This rich inheritance laid a strong foundation, but it is their relentless pursuit of perfection that has shaped them into the accomplished artists they are today. Under the guidance of eminent gurus like Gana Kalabhushana Vidwan H.K. Narasimha Murthy and Vidushi H.N. Rajalakshmi, along with mentorship from Vidushi Pushpa Srinivasan, Shri T.K. Srinivasan and Vidwan H.N. Bhaskar, Sindhu and Smita have honed a style that seamlessly blends depth with dynamism. Their music is a journey where soulful bhava meets technical finesse. Their command over the violin adds a rare dimension, making their performances both immersive and distinctive. The sisters create an experience that resonates deeply with audiences. Recognized for their excellence, Sindhu and Smita are A-grade artists of Akashvani Bengaluru and have consistently earned top honors in both vocal and violin disciplines. Their artistry has been celebrated with prestigious awards, including accolades from the Madras Music Academy, the Ananya Yuva Puraskara, Yuva Purundara Award, and the distinguished M.S. Subbalakshmi Fellowship. Sindhu and Smita are torchbearers of a legacy, carrying forward the timeless beauty of Carnatic music with grace, innovation, and unwavering dedication.
0: आज के इस प्रसारण में आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं B.S. प्रशांत, घटम पर G. ओंकार राव।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट दे आर अकॉम्पनीड ऑन मृदंगम बाय बी

0: एस प्रशांत, घटम बाय जी ओमकार राव,
1: सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता अपने वायलिन युगल वादन का आरंभ पचनम सुब्रमण्या अय्यर की रचना इरना पाई के साथ कर रही हैं। यह राग तोड़ी में आदि ताल पर निबद्ध है।
0: सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता बिगिन द वायलिन ड्यूएट रिसाइटल विद इरना पाई, अ कॉम्पोजिशन ऑफ पचनम सुब्रमण्या अय्यर इन राग तोड़ी, सेट टू आदि ताल।

0: अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वे अब संत त्यागराज की रचना गिरिराज सुता प्रस्तुत करेंगी, जो राग बंगाला तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट दे विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा गिरिराज सुता इन राग बंगाला सेट टू आदि ताल।

0: वायलिन युगल वादन सुन रहे हैं। आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं बीएस प्रशांत, घटम पर जी ओंकार राव। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए सिंधु सुचेतन और एचएम स्मिता अब प्रस्तुत करेंगी संत त्यागराज की रचना ललिते, जो राग भैरवी तथा आदि ताल पर निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड एचएम स्मिता। They are accompanied on Mridangam by B.S. Prashant, Ghatam by G. Omkar Rao. Continuing their performance, Sindhu Suchetan and H.M. Smitha will now present Lalite, a composition of Saint Thyagaraja in Bhairavi Raga set to Adi Tal.

0: सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता प्रस्तुत करेंगी मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना मीनाक्षी। यह राग पूर्वी कल्याणी में आदि ताल पर निबद्ध है।
1: सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता विल नाउ प्रेजेंट मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदि ताल।

0: अभी आपने तानी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर बी एस प्रशांत और घटम पर जी ओंकार राव ने प्रस्तुत किया।
1: That was तानी आवर्तनम presented on मृदंगम by बी एस प्रशांत एंड ऑन घटम by जी ओंकार राव।
0: सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता अपने वायलिन युगल वादन का समापन राग देश में तिलाना से करेंगी, जो विद्वान लालगुड़ी जयरामन की रचना है।
1: Sindhu Suchetan and H.M. Smita will conclude their violin duet recital with Thillana in Raag Desh, a composition of Vidwan Lalgudi Jayaraman.

0: होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर बीएस प्रशांत तथा घटम पर जी ओंकार राव।
1: With that, we conclude violin duet recital by Sindhu Suchetan and H.M. Smita in the National Program of Music. They were accompanied on mridangam by B.S. Prashant and on ghatam by G. Omkar Rao.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली के
2: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
3: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड्स और
1: डीटेल्स दी पंजाबी प्रसारण सेवा दा जलंधर केंद्र तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी पंजाब पंजाबी दी आवाज। मैं तुहाडा दोस्त हमदम पारस चड्डा लैके हाजिर हो चुका हूं प्रोग्राम सौगात। जी हाँ, 11:10 हो चुके ने, सौगात प्रोग्राम थोड़े को पहुँच चुका है जी। और जो हर वार हर शनिवार तुहानू इंतजार हुंदा है तुहाडियां फरमाइशां दा, गाणियां दा, गीतां दा, उस चीज़ां नू पूरा करन लई, उस जिहड़ी फरमाइश है और जिहड़ी खास सौगात तुसीं साडे लई प्रोग्राम च लैके आउंदे हो, उहदी फरमाइश पूर्ण करन दा टाइम आ चुका है। नंबर तुसीं जाणदे हो 0181 43 171 नंबर मिला के तुसीं अपने दोस्त पारस तक पहुँच सकदे हो। इंतज़ार बस तुहाडी कॉल्स दा,

इस प्रोग्राम में इतनी ख़त्म कर दी दो इजाज़त, अगले शनिवार ठीक 11:10 में लैके हाजिर हो जाएगा प्रोग्राम सौगात। तो सी जाना कितने नहीं क्योंकि सफर इदा ही चलता रहना। इस तो बाद ठीक पंजाबी नाटक म्यूजिकल फीचर और पंजाबी ड्यूट म्यूजिक तुहाडे लई लैके असी हाजिर हो जाना। इस प्रोग्राम में इतनी ख़त्म कर रहे हैं, मिलते हैं अगले प्रोग्राम।

0: नर्स, कुछ पता चले?
1: नहीं इंस्पेक्टर, मैं हर तरह ट्राई कर चुकी हाँ पर वो बोलते ही नहीं।
0: साडा विचार सी कि इस हस्पताल विच तुहाडी सेवा तो खुश हो के तुम सब कुछ दस देगा।
1: सारियां गल्लां कीतियां उसने पर बिजनेस बारे एक शब्द नहीं कढ़िया मूँह।
0: बड़ी चालू चीज़ है, इनकम टैक्स वालिया नाल असी इहदे फ्लैट दफ्तर ते बैंक दी तलाशी लै चुके हाँ पर इहदे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलिया।
1: छापा तो सर तुसीं इहदे पार्टनर विमल नंद दी भी मारिया सी।
0: उह तां धूमल दा भी पिओ है, उत्थों भी कुछ नहीं मिलिया। उहदी चलाकी तां इन्नी है कि इह अपने भाईवाल धूमल दा भी हिस्सा हजम कर गया। ऐसे सदमे कारण धूमल नूं हार्ट अटैक हो गया। हुण की हाल है उहदा?
1: पहला नालो ठीक है इंस्पेक्टर पर उन्हें दो हफ्ते अजे इत्थे रहना पेगा।
0: मतलब ये कि दो हफ्ते होर सानू इहदी निगरानी करनी पेगी?
1: इंस्पेक्टर धूमल की उम्र तो 30-32 साल लगती है, इन्नी छोटी उम्र में वो करोड़पति किवें बन गया?
0: बीबी पैसा उम्र नहीं देखता, पर किस तरह इन्हें पार्टनर नाल मिलके इन्ना पैसा कमाया है ये अजे तक समझ ही नहीं आया। नर्स, हुण धूमल कोल कोई है?
1: हुणे हुणे किसनू आया? उहदा नौकर खाना लैके।
0: ठीक, मैं हुणे आना।
2: किसनू?

0: तेरा कहना है कि विमल चंद का मुनीम भी नहीं जानता?
1: हाँ मालको, ओदा ख्याल है कि कागज़ विमल चंद ने घर ची कितने छुपाए हुए आ।
0: लगता तो मैनू भी ये हुए। अच्छा, विमल चंद के नौकर गिरधारी नू तां तू जानता ही है?
1: जी हाँ, मिलिया भी सी मैं उसनू, पर मालको ओ कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहुंदा।
0: पर किसनू? वो कागज तो मैनू हर हालत चाहिए ने। उन्हां कागजों तो बगैर तो मैं कौड़ी का भी नहीं, ना मैं अपना हिस्सा मंग सकता ते ना बदला ले सकता।
1: ओ मैं तां कहिंदा मालको, तुसीं उहनूं भुल ही जाओ, उहदे कारण ही तां तुसीं मरदे मरदे बचे हो।
0: ना किसनू, कागज तो मेरी मौत का वरंट बने हुए ने। बिमल चंद की घरवाली किरण का प्रेमी अशोक जानता ना, जा बुला के लिया उन्हूं।
1: अच्छा मालको, हुणे जाना।
0: तैनू दसा, ये अशोक भी विमल तो सड़िया बैठा है। किरण अशोक दी ही प्रेमिका सी, उन्हूं भी इस कमीने ने पैसों का लालच दे के फसा लिया।
1: अच्छा, इन्ना गिरया है।
0: हाँ, जा तू, जिथे भी भावें पताल च होवे अशोक नूं लैके आ।
1: जरूर जरूर मालको, हुणे लैके आउना उन्हूं मैं।

0: संतुष्ट सी, पर मेरी तमन्ना सी कि मेरी स्वेच भी कोई किरण आ जाए।
1: वाह वाह कवि जी महाराज, किस चलाकी ते नजाकत नाल अपनी मशूक ते क्लासमेट किरण नू याद कीता।
0: तू बल, तू सिर्फ पैसे नू समझ सकता है, प्यार नू नहीं, ते वो भी सच्चे प्यार नू ना। किरण मेरे दिल की धड़कन सी, ते हुण वी है, पर मैं उन्हूं प्राप्त नहीं कर सकिया क्योंकि वो लोग कारां वाले ते मैं एक साइकल सवार।
1: अशोक, तैनू तां उन्हें धोखा दे ही दिता ना।
0: ना ना तू बल, ना मैं अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर सकिया। खैर, उसने पता लग्या कि किसी विमल चंद नाल शादी कर ली
1: है। कमीने विमल नाल, हा हा, पठा बिठाता किरण दा ते तेरे प्यार दा।
0: तू जानता है विमल चंद?
1: हाँ हाँ, उस धोखेबाज हरामी नू कौन नहीं जानता। वो कमीना मेरा सारा हिस्सा हड़प गया, उन्हें डोब दिता, मैनू दिवालिया बना दिता।
0: अच्छा, तो तुसी दोवे पार्टनर सी?
1: हाँ।
0: बिजनेस की थी?
1: ओ यार, स्मगलिंग, काला बाजारी, मिलावट वगैरह।
0: अच्छा, तो तू इस देश द्रोह नू बिजनेस कहना?
1: ओ यार, बिजनेस ता नफा है, पैसा कमाउण नू कहिंदे ने। इस विच देश द्रोह कित्थों आ गया? 4 सालां च असीं 30 करोड़ रुपए कमाए, उस कमीने ने मेरे 15 करोड़ मार ले।
0: बेमानी की कमाई इसे तरह डुबदी होती है, हुण तू कुछ कर भी नहीं सकता।
1: मैं उहदा सत्यानाश करके रख दूंगा, तैनू पता नहीं शरीर छड़ के मैं किन्ना ताकतवर हो गया।
0: हाँ पता है, पता है। कहते ने कि मरण तो 13 दिन बाद तक बंदे का संबंध उहदे शरीर नाल जां राख नाल रहिंदा है, वह बंधन विच रहिंदा है। इस तो बाद उसकी आत्मा बहुत बहुत ताकतवर हो जाती है, किते भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है।
1: बस फिर 13 दिन बाद मैं नाग बन के विमल दे तहखाने में दबे हुए सोने ते बैठ जाऊंगा, उन्हें डंग मारूंगा, कष्ट खाऊंगा, खत्म कर दूंगा उसनू।
0: ना मेरे भरा, ना ये कम ना करी, वो मेरी किरण का पति है, किरण का सुहाग है, किरण का सुहाग ना कोई, मेरी मिन्नत है तेरे अगे।
1: ओए छाड़ी यार, वो तेरी सो कॉल्ड प्रेमिका किरण तेरे नाल धोखा करे ते तू अजे भी ओदे प्यार दी मुहार नहीं पड़ी जाना, वो तू बंदा के पशु।
0: तू मैनू जो मर्जी कह ले, पर मेरी किरण।
1: ओए सुन, तेरी किरण गई तेल लैन, गई टठे खूच, मैं विमल नू नहीं छड़ना, नहीं छड़ना, नहीं छड़ांगा। ते नाले सुन, तू भी इस काम च मेरी मदद करेगा।
0: क्यों, मैं क्यों करा तेरी मदद? ते नाले मेरी भी एक गल सुन ले।
1: की?
0: जे तू ताकतवर है तो मैं भी कोई घट नहीं, तू किरण नू जां विमल नू हथ ला के तां दिखाई।
2: बड़े गुस्से च सन दोनों आत्मावां,
3: एक प्रेम प्रेम दी रट लगाई जांदी सी ते दूसरी बदले दी, पर दोनों आत्मावां नू नहीं पता के शरीर तां उहनां दे कोल है ही नहीं।
2: फिर भी लड़ी जांदियां सन
3: बेचारियां। लै, एक तां गुस्से दे जोश नाल गिर भी पई है।

0: तुमल तुमल मेरे दोस्त, ओ की हो गया तेनू?
1: अशोक तू आ गया, बहुत डरावना सुपना सी।
0: देखता सही, तू तो पसीने पसीने होया पिया है।
1: अशोक सुपने च मैं नरक दे विच आ, उत्थे मैनू बहुत बड़ी अग च सुट रहे आ। मैं चीकदा हत्थ पैर मारदा पर कोई फायदा नहीं। फिर मैं देखदा वह मैनू बहुत वड्डे डूंगे काले खूह च धक्का दे रहे आ। मैं भजन की कोशिश करदा पर कई आत्मावां मैनू घेर लैंदियां।
0: आत्मावां? हाँ आत्मावां, किस तरह की आत्मावां?
1: अन्नियां लंगड़ियां हत्थां पैरां तो बिना पैड़े पैड़े रोकां वालियां आत्मावां।
2: पापी नीच कमीने, तेरे कारण साड़ी ये हालत हुई है। रब ने धरती बनाई, किसानां ने अन्न उगाया, रब ने मीह नाल उसनू सींचिया, ते तू बेवकूफा स्वार्थी लालची पैसे दे पुत्र, तू अन्न अज च जहर

0: देख अशोक, ओ देख विमल चंदा महल, मरदूद ने मेरी दौलत हड़प के बना लिया ये महल। सौरिया होवेगा चांदी दे पलंग ते किरण नू बाहां च लै के, हुणे पट्ठा बिठाउणा जाके दोहां दा।
1: ना तोमल, ना मेरी किरण नू कुछ ना कहीं, नहीं ता
0: ओ नहीं ता की कर लेगा, ओ विमल चंदा तू की बिगाड़ लिया, ओ जिहड़ा तेरी किरण नू तैथों खो के लै गया। लै देख ओए शोकिया, ओ देख ਓਏ ਬਾਗ 'ਚ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਓਏ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਓਏ ਜਾ ਜਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਉਹ ਕਿਰਨ ਦੀਆਂ ਕਚਰਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਭੈੜੇ ਬਦਸ਼ਕਲ ਵਿਮਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ।
1: ਦੇਖ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਨਾ ਦੇ।
0: ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਵੜੇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ।
1: ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ?
0: ਇਹੀ ਸਮਝ ਲੈ,
1: ਲੈ ਤੇ ਲੈ ਫਿਰ।
2: की गल है किरण, डर क्यों गई है अचानक? अपने दोहां तो सवाह तो कोई नहीं?
3: नहीं नहीं नहीं विमल, हुणे हुणे मैनू इंज लगा जिवें किसे ने मैनू मैनू जिवें किसे ने बर्फ फर के ठंडे हथे नाल जिवें मैनू फड़ ले। हाय रब्बा, पता नहीं कौन है, मैनू बड़ा डर लग रहा है विमल, मैनू बड़ा डर लग रहा है। आ विमल,
2: ओए आ गई, मैनू भी किसे बर्फ वर्गे ठंडे हथां ने फड़ लिया। बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ।

0: बोल चित्रगुप्त, अज दा कोई खास समाचार?
1: दो नवे जीव आए ने महाराज।
0: इन्हां दा वेरवा बोलो।
1: धरती उत्ते एक दा नाम तूमल सी ते दूसरे दा अशोक। महाराज 84 लाख जूना भुगत के इन्हां नूं अपने कल्याण करन लई मनुख दी जून मिली सी, पर ये बंदे मोह माया विच ही फसे रहे।
2: ये झूठ है धर्मराज, मैं कदी मोह विच नहीं पिया।
0: चुप रहो, साडे दरबार विच झूठ लई कोई थां नहीं। हाँ चित्रगुप्त,
1: इस अशोक नाम दे जीव नूं अपने हंकार नाल बहुत मोह सी। पुराने संस्कारां करके जो कर्म ये करदा सी उन्हां नूं अपना त्याग समझदा सी। ये अपने आप नूं खुले दिल वाला समझदा सी। इत्थों तक इहदा प्रेम भी दूषित है महाराज।
2: नहीं महाराज, मेरा प्रेम दूषित नहीं सी।
0: चुप रहो
1: महाराज, इसका प्रेम भी दूसरे लोगों वांग सी, पर ये उसने त्याग ते आदर्श कहिंदा सी।
2: महाराज
0: तैनु भी बोलन का मौका देंगे।
1: ते महाराज इस दी प्रेमिका नू भी इस दे कारण हाथों वध तकलीफा कटनिया पईयां।
2: मेरे कारण?
1: हाँ हाँ तेरे कारण, क्योंकि तू उसनु प्यार करदे हुए भी उस तो दूर हुंदा गया, अते इस विच तू सुख समझदा सी।
0: अशोक तू कुछ कहना चाहेगा?
2: नहीं महाराज, सिर्फ एक गल ते यकीन कर लो कि मैं किरण नु सच्चा प्यार करदा हाँ।
0: इसे मोह कारण तैनू किरण दी कोख विचों जन्म लेना पवेगा। दूत
3: जी महाराज,
0: इस जीवन मुक्त कर दियो, इसे पल इसने किरण दी कोख विच दाखल होना है।
3: जो आ गया महाराज।
0: चित्रगुप्त
1: जी,
0: ए दूसरा जीव
1: बहुत ही मिन्ना मीसना जीव है यमराज।
0: टीठ भी बहुत लग रहा है।
1: कला टीठ ही नहीं महाराज, परले दर्जे दा कमीना ते स्वार्थी भी है। पैसे कमाउन लई रातों रात धन कुबेर बनन लई इसने हजारा बेगुनाहां नूं मार दिता महाराज।
2: बिल्कुल नहीं, मैं किसे नूं नहीं मारिया।
1: देख ली इसकी आकड़, इसका नाम तूमल है महाराज। इस निर्लज अते जालम ने किसानां दे उगाए अन्न विच भी जहर मलाया, लोकां नूं तरह तरह दियां बीमारियां दा शिकार बनाया। इस द्वारा कीती गई मिलावट दे कारण ही बहुत सारे लोग अपाहज, लंगड़े ते अन्ने हो गए।
2: नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ व्यापार कीता सी। व्यापार विच चंगा माड़ा कुछ नहीं हुंदा धर्मराज जी। जे मैनूं पहला पता हुंदा कि इस तरह के व्यापार नाल जान माल की हानि होनी है तो मैं ये काम कदे ना करदा।
0: पापात्मा तू बहुत अकलमंद है, पर तू अपनी अकल का इस्तेमाल बहुत भैड़े कमां लई करदा रहा है। तैनूं इन्ना पता भी सी कि तू गंदे काम कर रहा है।
2: शायद तुसी ठीक कह रहे हो महाराज, मैं रुपये पैसे नूं ही भगवान समझदा रहा। महाराज मेरा छुटकारा करवा दो, जो कहो मैं करूँगा, जो कहो।
0: पापात्मा ये मृत्यु लोग नहीं, जिथे पाप करी जाओ ते हवन जग करवा लो। गंगा विच डुबकी लगा के ये समझ लो कि सारे पाप धोते गए। ये यम लोग है, इत्थे कर्मा दा फल भोगण तो बाद ही पापा तो छुटकारा मिलता है। अगर तेरा पश्चाताप सच्चा है तो कर्म योग तो बाद तेरे सारे पाप धोते जाणगे।
1: धर्मराज ये बड़ी छटी हुई चीज है सब।

0: मालिक मालिक जागो उठो, आ की बोली जा रहे हो? हे रब्बा तेरा लख लख शुक्र है, मालिक नू होश आ गया है।
1: डॉक्टर लगता है रब ने एक बार फिर धरती ते वापस भेज दिता है इन्हां नू। कांग्रेचुलेशंस।
2: मैं नरक चो किस तरह बच गया? मैं किथे आ मैं?
0: मालको तुसी हॉस्पिटल चो, आ देखो सिस्टर, आ देखो डॉक्टर, ते मैं किशनू।
2: ते ओ ओखी सी नरक वर्गा है।
0: ओ मालको तुहाडा तां दूजा जन्म होया है।
2: हाँ किशनू, नरक दी यात्रा तो बाद सचमुच मेरा दूजा जन्म ही होया। पुराना सेठ तुमल मर गया, ते नवा तुमल जांदा है। मैं पश्चाताप दी अग विच सड़ रहा है किसनू। मैं प्राश्चित करके अपनी आत्मा नु शुद्ध करना चाहुंदा। नर्स
1: जी, मिस्टर तुमल चंद,
2: मैनू पता कि हस्पताल विच मेरे कमरे नु पुलिस ने घेरा पाया हुआ। तू मेरे काले तंदे दे बारे

लोक गीत साढ़े पंजाब दी आत्मा दी आवाज ने पंजाब दी धरती लोक गीतां दी धरती है। लोक गीत लोकां दा ही सांझा सरमाया ते सभ्याचार ने क्यों जो इना विच ही सरब सांझी जिंदगी दी धड़कन ते दुख सुख दा चलका रहे। लोक गीत ही ने जो पंजाब दी जीउंदी जागदी तस्वीर ने। लोक गीत पंजाबियां दियां खुशियां गमियां ते दिलां दे उबाल ने जेड़े आप मुहारे वह तुरदे ने ते सदियां पुराने हुंदे हुयां भी सदा सजरे लगदे ने। मां शब्द कहंदियां ही मूँह माखियों मिठी मिठास नाल भर जांदा है। मां जिसका प्यार अमुख अकै ते असगा है। मां जन्मदाती है ते प्रफुल्लत दाती वी। होर तां होर मां ममता दी देवी है जिसनू असी रब्बी रूप ते नूर भी कह सकते हाँ। साढ़े पंजाबी लोक गीत भी मां प्यार नाल ओत प्रोत ने।

मां मां अखवान विच फखर महसूस कर दिए उस दे इस पावक वलवले विच अथा सचाई परिपईए मनुखी जीवन जन्म तो मरण तीक लोक गीता नाल लथ पथ होया मिलदाए मनुखी जीवन दिया खेड़ा विच भी मां शब्द पंजाबियां दे मानसिक वलवलिया नाल परिया ते परोया होया मिलदाए मां बच्चे नू लोरी भी देंदी ए ते लोक गीत दे रूप विच।

0: जे बाल मां तो मुंह ना धोवे तां भी मां प्यार नाल उदा मुंह लोक गीत नाली धोंदी है।
1: इची बीची कोको खाए क्यों दी चूरी काका खाए चिड़ी बिचारी की करे ठंडा पानी पी मरे।
0: जदों ती जवानी दी दहलीज ते कदम रख दिए ता उदे पराए कर जान दियां गल्ला होन लग पेंदियां ने ते ती मां नूं कहिंदी।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वख-वख चैनल अते आकाशवाणी दे वख-वख भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओ भी क्रिस्टल क्लियर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

0: आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वख-वख चैनल अते आकाशवाणी दे वख-वख भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओह भी क्रिस्टल क्लीयर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो।
1: ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੜਕੇ 3 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ।

सिर नाही दातार अपना नाम देह गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह। ए फरमान साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी वल्लों उचारित है। पंचम गुरदेव अकाल पुरख के चरणों विच बेनती करते ने कि हे दातार प्रभु मैनू अपने नाम की दात बख्शो, मेरे ते किरपा करो कि मैनू आप जी का नाम कदे ना विसरे। मेरे मन विच यही उमंग है, यही चाह है कि मैं आप जी दे गुण गायन करदा रवां। बेशक प्रभु दे गुण बयान नहीं कीते जा सकते, उस दे गुण गायन भी नहीं कीते जा सकते, पर अकाल पुरख जेकर आप किरपा करे तां ये संभव हो सकता है। क्या गुण तेरे सार संभाली मोह निर्गुण के दातारे, बै खरीद क्या करे चतुराई ए जियो पिंड सब थारे। सरवण करदे हां भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

क्या गुण तेरे सार संभाली, मोहे निर्गुण के दातारे, बैखरीद क्या करे चतुराई, ए जियो पिंड सब थारे। आप जी सरवण कर रहे सो भाई अमरीक सिंह ते उना दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द। प्रभु प्यारे जन गुरमुख जन उस परवरदिगार दी भगती विच लीन रहिंदे हन, सदा उस दी उस्तत करदे रहिंदे हन, ओ खुद उस्तत अते निंदा तों उपर हुंदे ने। ते जे कोई ऐसे भले पुरशां दी निंदिया भी करदा है तां भी ओ अपना गुण गायन करन वाला सुभा त्याग दे नहीं। हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावै। सरवण करदे हां डॉक्टर गुरनाम सिंह होरां वल्लों गाया होया ये शब्द।

पतित पावन प्रभ तेरो नाओ, पूरब करम लिखे गुण गाओ। आप जी सरवण कर रहे सो पाई दर्शन सिंह कोमल ते उना दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द।

दुख दारू सुख रोग पे आजा सुखता न होई, तू करता करना मैं ना ही जाहु करी ना होई। बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा, जात में जो जोत में जाता कलकला भरपूर रहा।

खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भेव नानक तांका दास है स्वयं निरंजन देव महला दूजा।

0: अंतक बदा न सल कव गुर रामदास तेरी शरण।
1: श्री गुरु साहिब सब ऊपर करी कृपा सत जुग जिंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत धरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लख्या ना जाई साधिक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह।

जहे पिखत अत होए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास। नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा।

ज्यों आरण लोहा पाए पन्न कढ़ाई त्यों साकत जो नी पाए पवै पवाई बिन बूझे सब दुख

ब्रज पंथ की जीतन श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जी वाह।

साई भव दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे सो हुकम बनाए सी हुकम मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चंदया सो फल पाए सी ता दरके पैदा जाए सी ता दरके पैदा जाए सी।